और यहां तक कि सब्र की बात हमारे लिए फकत नहीं, हमारे लिए देखिए माशाल्लाह अभी हाजी साहब ने कुरान मजीद की तिलावत की तो उसमें आपने एक आयत पढ़ी थी, मैं चाहता हूँ वापस पढ़िए, या लदीन आमन उसमे रुसाबेरू पढ़िए पढ़िए, सुना आपने, ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है, तीसरा सूरा 200वीं आयत, चैप्टर 3 वर्स नंबर 200, ऐलान रब्बुल इज्जत व का बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, या अय्युहल्लज़ीन आमनु सबरु वसाबरु वराबतु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान लाने वालों सब्र करो और आपस में सब्र करने में भी लोगों की मदद करो और दुश्मनों के सामने अटल रह जाओ और खुदा की तकवा को इख्तियार करो ताकि शायद तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। देखिए ये यहां पर भी खुदा ने क्या कहा, सब्र अगर होगा तो कामयाबी आपके लिए हाजिर हो जाएगी, और ये सब्र कहूं फकत हमारे लिए नहीं, खुदावंद करीम ने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम को हुक्म दिया, सूरह मआरिज कुरान मजीद का 70वां सूरा आयत का निशान है 5 चैप्टर 70 वर्स नंबर 5, ऐलान रब्बुल इज्जत का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसबर सब्रन जमीला, ए मेरे हबीब फसबर सब्रन जमीला, ए मेरे हबीब ऐसा सब्र करो कि जो सब्र खूबसूरत हो। अच्छा, खूबसूरत भी कोई होती है चीज, वो भी सब्र के अंदर, और यही बात बताता जाऊं, घर जाके कुरान खोलिएगा, सब्र जमील का तज़किरा पूरे कुरान मजीद में 2 बार आया है, एक नबी करीम के लिए और एक जनाब याकूब और यूसुफ के वाकये में, कि जब जनाब याकूब को बताया गया कि इस तरह से आपका बेटा मुसीबत में गिरफ्तार है, वहां पर जनाब याकूब ने कहा था कि मैं सब्र जमील करूंगा। सब्र जमील यानी क्या, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, सब्र जमील उसको कहते हैं कि जिसके अंदर बंदा अपने जैसे बंदे से कभी शिकायत नहीं करता। खूबसूरत सब्र कौन सा है कि जिसमें बंदा अपने जैसे बंदों के सामने शिकायत नहीं करता, वही हमारी गुजराती वाला रोदड़ा रोवा, गुजराती वाला रोदड़ा रोवा, बस शिकायतें गिलाई करना, रोजी नहीं चलती, काम नहीं मिलता, ये होता है वो होता है, ऐ खुदा का बंदा क्या तेरा परवरदिगार मर गया है, तू क्यों तेरे जैसे आदमी के सामने शिकायतें करता है, सब्र कर, और अगर कोई तलकीन है कोई हाजत है तो खुदा के पास जा, अगर खुदा ने तूने हटा दिया तो कामयाबी कहां से मिलेगी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आज आइए आइए सल वाला मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो कामयाबी तक हमको जाना है और कामयाबी के लिए एक कदम और आज बढ़ेंगे। वापस याद दिलाता हूं, ये हमारे मोहतरम अजीज सामे जो अभी आखिर में आया, कामयाबी चाहिए हाजी साहब पहला कदम है खशियत परवरदिगार, कामयाबी चाहिए हाजी साहब दूसरा कदम है इताअत परवरदिगार, कामयाबी चाहिए हाजी साहब तीसरा कदम है ईमान व अमल, कामयाबी चाहिए हाजी साहब चौथा कदम है सच्चाई, कामयाबी चाहिए हाजी साहब पांचवा कदम है सब्र। आज एक और कदम आगे बढ़ेंगे, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह साफ़ात कुरान मजीद का 37वां सूरा आयत का निशान है 58, 59, 60, 61 चैप्टर 37 वर्स नंबर 58, 59, 60 एंड 61 लोग जन्नत में है, मतलब हम सब इंशाअल्लाह लोग जन्नत में है और आपस में बातें कर रहे हैं, अब जन्नत की तरफ जन्नत के इनामात को हासिल करने वाले हैं, सूरह साफ़ात 37, 58 जन्नती आपस में बातें कर रहे हैं और उनमें से बातें करते करते खुदावंद करीम ने कहा कि ये लोग कयामत के दिन जन्नती लोग आपस में बातें

करते हुए ये कहेंगे और कहेंगे वमा नहनु बिमय्यतीन, क्या हम वापस मरेंगे? वो मर के वहां पहुंचे, इसका मतलब जन्नत में अगर जाना है तो कहां से गुजरना पड़ेगा? मर के, क्योंकि यहां किसी को मरना नहीं है। ये लोग वहां पहुंचे मर के, तो वहां पहुंचते भी उनको यह डर है कि कहीं वापस मौत ना आ जाए, तो बातें कर रहे हैं आपस में, अफामा नहनो बे मयतीन, क्या हम दोबारा मर जाएंगे? आपस में बातें कर रहे हैं। इल्ला मौततनल उला वमा नहनो बे मुअज्जबीन, कि नहीं हम एक बार मर चुके हैं पहली बार, और अब इसके बाद हम पे अजाब नहीं आएगा। क्या ऐसा है, क्या हम दोबारा मरेंगे, या हमारी फकत पहली मौत जो थी वो थी और गुजर गई और हम अजाब के लायक नहीं होंगे? वहां से जवाब आया खुदा का, मिनाज साहब आपके सामने कुरान है, क्या है उसके बाद आयत, इन हाजा लहुअल फौजुल अजीम लिमिस्ल हाजा फलयअमल आमिलून। खुदा ने करीम बयान कर रहा है कि जब बंदे की जिंदगी में यह मोड़ आ जाए कि वो अपने आप को अजाब से बचा सके, वो अपने आप को अजाब से महफूज कर सके, वो अपने आप को मुअज्जब होने से रोक सके, जब बंदा के ऊपर अजाब न आता हो, अजाब के लायक वो न हो, तब खुदा ने क्या कहा कुरान मजीद में कि ये उम्दा फौजे अजीम है। अब खुदा ने उसके बाद ये भी कहा, उन लोगों की बातें हैं, ले मिसले हाज़ा फलयअमल आमिलून, और इसी तरह से लोगों को अगर फायज होना चाहिए, चाहते हैं लोग कामयाब होना, तो इसी तरह से उनको करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे काम करे जिसकी वजह से वो अजाब के अंदर गिरफ्तार न हो। अब सवाल ये उठता है कि अजाब के अंदर गिरफ्तार न होने के लिए क्या करना चाहिए? शील्ड कहते हैं उसको इंग्लिश में, गुजराती में ढाल के वाई, उर्दू में क्या कहते होंगे अब, ढाली कहते हैं ना, वो कौन सी शील्ड, वो कौन सा ढाल या कौन सी ढाल है जिसकी वजह से मैं अपने आप को अजाब से महफूज रखूं, और जो आदमी अजाब से महफूज हो जाएगा वो फौजे अजीम पर फायज हो जाएगा, उसको कामयाबी मिल जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अजाब से बचने के लिए क्या करना चाहिए, बोलिए एक दो जवाब दीजिए आप जी। ठीक है, इसने कहा अहले बैत को याद कर दीजिए, किसी और को कुछ बोलना है? इन्होंने कहा नमाज, इन्होंने कहा गुनाह से बचे, और कुछ है जी? कुरान, कुरान को थामे रखना है तो कुरान से अजाब से बचेंगे। ये सब हमारे आपके जवाब है, खुदा का जवाब कुछ और है। क्या है मुसलमान, अगर तू चाहता है कि अपने आप को अजाब से बचाए रख, अजाब से महफूज हो जा, तेरी जिंदगी में अजाब न आए और आखिरत में भी अजाब न आए, तो उसका ऐलान खुदा बंदे करीम ने कुरान मजीद में कर लिया है। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, चैप्टर 8 वर्स नंबर 3 सूरह अनफाल 8वां सूरा आयत का निशान है 33। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कानल्लाहु लियुअज्जिबहुम वअंत फीहिम वमा कानल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तग़फिरून। ए मेरे हबीब, जब तक तू इनके दरमियान रहेगा तब तक खुदा का अजाब नहीं आएगा। आए मेरे हबीब, जब तक ये तेरी कौम इस्तगफार करती रहेगी तब तक अजाब कभी नहीं आएगा। नतीजा क्या निकला कि ऐ मुसलमान, अगर तुझसे अजाब को दूर करना है, अजाब से तुझे बचना है, अजाब से महफूज रहना है, तो एक काम करना पड़ेगा, उसका नाम है इस्तगफार। इस्तग़फार से क्या होता है,
अजाब दूर होता है, और जिससे अजाब दूर

हो गया वो क्या होता है, वो कामयाब होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा ने कहा मेरे हबीब जब तक तू है अजाब नहीं आएगा, और अगर तू चला गया और जब तक तेरी कौम इस्तगफार करती रहेगी वो अजाब में मुब्तला नहीं होगे। यही बात मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, नहजुल बलागा मौला ने इरशाद फरमाया, काना फिल अर्द अमानान, काना फिल अर्द अमानान, जमीन पर दो अमान देने वाली चीज थी, फकत रुफ़िअ अहदुहुमा, उन दोनों में से एक चीज को खुदा ने उठा लिया, वदूनकुमुल आखर फतमस्सकु बे, दो अमान देने वाली चीज थी उनमें से खुदा ने एक को उठा लिया, गोया वो कौन, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूनकुमुल आखर, दूसरी चीज अभी बाकी है, फतमस्सकु बे, उनसे पकड़, उनको पकड़ के रखना, फतमस्सकु बे, पूछा गया वो कौन सी चीज है, जवाब अल इस्तगफार। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमान देने वाली पहली जात नबी की चली गई, अली ने कहा एक बाकी है अभी, जो कुरान ने कहा वही चीज इस्तगफार बाकी है। अजीजा ने मोहतरम, यह इस्तगफार कामयाबी तक कैसे ले जाती है, क्यों ले जा सकती है, क्योंकि बंदा गुनहगार बंदा है और गुनाह उनसे सरजद होते हैं, और कामयाब अगर होना है तो अजाब को अपने आप से दूर करना है, और अजाब के दूर होने की ढाल या वसीला अगर कोई है तो वो है इस्तगफार। देखिए क्या कह रहे मौलाए कायनात और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात कह रहे का औदु अलसनतकुम अलइस्तगफार फइन अल्लाह लम युअल्लिमकुम अलइस्तगफार इल्ला वहुवा युरीदु अन यगफिर लकुम। ऐ मुसलमानों, अपनी जबानों में इस्तगफार करने की आदत डालो, क्योंकि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तुम्हें इस्तगफार इसलिए सिखाया है क्योंकि खुदा चाहता है कि तुम्हें माफ करे। अपनी जबानों को इस्तगफार की आदत डालो, क्योंकि खुदा ने अगर तुम्हें इस्तगफार सिखाया है अपनी जबानों का इस्तगफार की आदत डालो, खुदा ने अगर तुम्हें इस्तगफार सिखाया है तो इसलिए कि वो चाहता है कि वो तुम्हें माफ कर दे। बहुत से ऐसी रिवायत है। अब देखिए इस्तगफार के इतने फायदे हैं कि मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन इतना तो काफी है ना कि इस्तगफार से मैं और आप कामयाब हो सकते हैं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा अला उअल्लिमुकुम दाउकुम व दवाउकुम, नबी ने कहा क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको बताऊं कि आपके लिए दवा क्या है और आपकी बीमारी क्या है और उसकी दवा क्या है। नबी करीम ने कहा आप लोगों की अगर कोई बीमारी है तो वो है ज़ुनूब, बीमारी का नाम है गुनाह, और गुनाहों की दवा अगर कोई है तो वो इस्तगफार है। इसलिए आज का हमारा मौजू, कामयाबी हासिल करने के लिए छठी चीज़ अगर कोई है तो वो है इस्तगफार। लेकिन ये इस्तगफार मेरी जबान पे क्यों नहीं आता? पहली बात तो ये है, ये कोई फकत ऐसे तोते की तरह पढ़ने की बात नहीं। देखो तोते की बात आई तो आप एक चीज आपको समझा दूं। हमारे चचा इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, आपने कहा है कि जो आदमी सोने से पहले 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेगा ना तो सुबह उठते उठते तक उनके जितने गुनाह हैं ना वो उस तरह से माफ़ हो जाएंगे जिस तरह से किसी दरख्त से उसके पत्ते गिर जाते हैं। बस इतना

सोने से पहले मैं इस्तग़फ़ार पढ़ूँ तो सब ख़त्म हो जाए, तो फिर तो और का नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? ये तोते की तरह पढ़ने की बात है। हकीकी इस्तग़फ़ार कब कहलाएगा? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपने कहा, इज़ा अलहमुका रब्बुकल इस्तग़फ़ार फ़अलम अन्नहु युरीदु अन यग़फ़िर लक। ऐ खुदा के बंदे, अगर खुदा बंदे करीम तुझको इल्हाम करे, हमारी ज़बान में तुझ पे वही नाजिल करे, आप किसी पे वही नाजिल होती है? किसी पे नहीं। इसलिए मौला ने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है? इल्हाम। इल्हाम को इंग्लिश में कहे इंस्पिरेशन, और इल्हाम उर्दू में तो समझते होंगे आपने गुजराती में कहवाए। मौलाए ए प्रमाणे कहूँ, जो तारो परवरदिगार तने इस्तग़फ़ार सुजाड़े, गुजराती में बोले खुदा है मने सुजाड़ो, तो उर्दू में क्या कहेंगे? तौफीक और सुजाया बोलते हैं उर्दू में से। खुदा ने मुझे सुजाया। मौला ने कहा, अगर तेरा परवरदिगार तुझे माफी मांगने का सुझाए तो जान लेना वो तुझे ये काम सुझा रहा है क्योंकि वो तुझे माफ करना चाहता है। तू खुदा का पसंदीदा बंदा है, इसलिए तुझे याद रहता है कि मैं गुनहगार बंदा हूं, खुदा की बारगाह में माफी तो ले लूं। मौजू है कामयाबी, और इस्तग़फ़ार कोई छोटी मोटी चीज है। मैं आपको मेरे बचपन का, बचपन तो क्या 16 साल का था जब मैं हौजा में पढ़ने गया था। ये पगड़ी बगड़ी ऐसे नहीं आई मुफ्त में, बाजार से नहीं खरीदी, गया था पढ़ने। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हाँ 16 साल का था, आज 54 का हूँ, कितना हुआ 38, सो आज से 30-40 साल पहले। तो हम तलबा थे, हमारा एक था मुफ्ती तबीब जैसा, हमारे साथ पढ़ता था। वो उसके पास दवा खाना था, तो हम शागिर्दों में से कोई भी उसके पास जाता था और कहता था, भाई सर दुखता है, सर दुखता है, तो वो पेनेडोल देता था। पेनेडोल बोलो आप लोग, पेनेडोल ही कहते हो ना यहाँ, पेनेडोल क्या, चलो पेनेडोल जो भी हो, जो भी दवा का नाम पेनेडोल। हाँ यहाँ कहाँ दवा, हमको दुकान कहाँ खोलनी है दवा की, भाई छोड़ो ना, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिसको सर का दर्द था उसको उसने कहा पेनेडोल ले ले। फिर उसके बाद कोई और आता था कहता मुझे पेट में दर्द है, तो उसको कहता था पेनेडोल ले ले। फिर हम फुटबॉल स्पोर्ट खेलते थे, उस पर कभी गिरते थे, जख्म हो जाते थे, तो कहते कि भाई ये जख्म हो गया है, तो वो कहता था पेनेडोल ले ले। कोई और आता था दांत में दर्द है, वो कोई डॉक्टर बक्टर नहीं था, हमारे जैसा ही था कंगाल, आज दांत का दर्द है पेनेडोल, जो भी कहो जो भी बीमारी का नाम लो पेनेडोल दे देता था। अजीब मामला था, तब समझ में नहीं आया, लेकिन जब इस्लाम के अंदर गए तो वहां पर एक ऐसी पेनेडोल है, एक ऐसी दवा है जो सब चीज के लिए काम आ सकती है। आपको दलील दूं, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम मौला का दावा था ना, सलूनी सलूनी कबलन तफ़क़दूनी, तो मौला बैठे थे गालिबन, अगर हाफजा साथ देता हो तो इब्न अब्बास वहां बैठे थे मौलाए कायनात के पास, वो बैठे थे। तो कोई पहला एक शख्स आया, कहा मौला खुदा ने हमें औलाद नहीं दी है, क्या करे? मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। वो यहां से निकला, अब यूं समझे खोजे हजरत आए थे पूरा काफिला लेके, सब अपने अपने तावीज लेने के लिए, अपनी अपनी बीमारियों को पेश करने के लिए। तो एक आया का औलाद नहीं होती, इब्न अब्बास कहते हैं मौला ने जवाब दिया इस्तग़फ़ार करो कसरत के साथ। थोड़ी देर न गुजरी थी कोई और आया, उन्होंने कहा, मैं अपनी आपको समझाने के लिए, मेरे यहां मुर्गियां हैं अंडे नहीं देती। मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। कोई और आया, खेती में फसल नहीं आती। मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। कहा खेती तो है लेकिन बारिश नहीं होती। मौला ने कहा इस्तग़फ़ार। ये हो रहा था, इब्ने अब्बास कह रहे हैं, मैं हैरान हो गया।

या जो भी आता है अलग अलग शिकायत लेके आता है, दवाइयां की दे दिया जाती, पेनेडोल। एक सलात पढ़े मोहम्मदी वाले मोहम्मद पर, जब सब खोजे हजरत फारिग हुए तो मैंने हिम्मत कर से मौला को पूछा, मैंने कहा या अमीर अल मोमिनीन ये क्या माजरा है। मैं होता शायद साथ में एक चीज कहता, मौला को मौला आपने क्या खोजों को उल्लू बनाया, एक ही दवा बार बार दे दी। इब्ने अब्बास ने जब ये पूछा तो मौला ने कहा, इब्ने अब्बास ये अली कभी कुरान के खिलाफ कोई बात करता है? ये अली कभी कुरान के खिलाफ कोई बात करता है? कहा मौला वजात कीजिए। कुरान मजीद में इसका जवाब आया, सूरह नूह कुरान मजीद का 71वां सूरा आयत 10 11 12 13 सुनिएगा। खुदावंद करीम ने कहा, जनाब नूह ने अपनी कौम को कहा, माल गए लोगो ये बात कर लो, इस वकाला वकुल तो इस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। नबी नूह ने अपनी कौम को कहा कि मैंने आपको कहा है, अपने परवरदिगार के सामने गुनाहों की माफी मांगो क्योंकि वो गफ्फारा है, गुनाहों को माफ करने वाला है। युरसिलु समा अलैकुम मिद्रारा, खुदा ने कहा, जनाब नूह क्या अक्वाल है, इस्तगफार करोगे खुदावंद करीम आसमानों से तुम्हारे लिए बारिश को नाजिल करेगा, व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, तुम्हें माल भी देगा तुम्हें औलाद भी देगा, व यजअल लकुम अनहारा व यजअल लकुम जन्नातिन, तुम्हें बाग भी देगा, व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हें नहरें भी जारी कर देगा। मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा, अरे तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह सुबहान व तआला की इस्तगफार नहीं करते और उम्मीद उसके ऊपर नहीं रखते। आपने देखा इस्तगफार में खुदा ने क्या कहा, बारिश भी आएगी, औलाद भी मिलेगी, माल भी मिलेगा, सही है, बागात, सब कुछ फायदा किस में है, इस्तगफार में है। लेकिन इस इस्तगफार को मैंने समझा नहीं, और रोजी तो सबको चाहिए ना, हम सबको। तो सुनिए, यही मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहि सलाम, मौला ने कहा, बिल इस्तगफार यजीदु रिज्क, इस्तगफार से रोजी में इजाफा होता है। ये सब क्या है, इस्तगफार की फजीलत है। लेकिन मैं इस्तगफार या यूं कहूं जैसे इन्होंने कहा या इन्होंने कहा, ये इस्तगफार की तौफीक मुझे क्यों नहीं मिलती? मैं वो तोते वाला इस्तगफार नहीं, ऐसे तोबा तोबा तोबा तोबा, ये तोते वाले इस्तगफार की बात नहीं करता, वो वाला इस्तगफार जो सच्चे दिल से हो, वो क्यों नहीं होता? ये इस्तगफार क्या है, क्यों मुझे नसीब नहीं होता, कहीं तो गड़बड़ होगी ना। मौलाए कायनात के दो कौल आपको देता हूं, ये इस्तगफार क्यों नहीं आता। पहली हदीस मौलाए कायनात की ये है, आपने कहा, अहसनुल इस्तहया, अहसनुल इस्तहया हयाउका मिन नफ्सिक, सबसे बड़ी शर्म हया जिसको कहते हैं, अहसनुल इस्तहया वो कौन सा है, जो बंदे को अपने आप से शर्म हो। खुदा से शर्माना है, माशरे से शर्माना है, लेकिन सबसे बड़े हया वो कौन सी है, अपने आप से शर्माना। ये क्यों नहीं होता, क्यों मुझे पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा किरदार क्या है, मेरे अमाल क्या है, मैं जिंदगी को कैसे बिता रहा हूं, क्यों क्यों मैं अपने आप को कभी शीशे के सामने रखता ही नहीं ताकि मुझे कभी कभार अपने आप से शर्म महसूस हो। नहीं होता वो, आपको पता है इसका सबब क्या है। मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहि सलाम, दूसरा कौल आपके सामने वो भी नहजुल बलागा का है, मौलाए कायनात ने कहा, इस्तहया उर रजुले मिन नफ्से ही थमरतुल ईमान, बंदा जब अपने आप से शर्माता है तो ये अपने आप से शर्माना वो ईमान का फल होता है। नतीजा क्या निकला कि बंदा तेरा ईमान इतना कमजोर है, तेरा ईमान वो हकीकी ईमान है ही नहीं कि तुझे अपने आप से शर्म आए। अगर हकीकी ईमान आ गया

मुझे कामयाब होना है यहां पर भी और आखिरत में भी। ये कामयाबी पाने के लिए इस्तगफार का होना जरूरी है ताकि मैं अजाब से बच जाऊं। अजीजान मुहतराम, कयामत के दिन क्या होगा सुनिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा तूबा, तूबा मुबारक हो, मुबारक। यहां कोई है जिसका नाम मुबारक हो? है किसी का नाम? तमे दार सलाम थी आओ छो, वाचे अपना मुबारक भाई, हाँ सगा थे तमारा मुबारक, मुबारक। तौबा लेमन वजदा फी सहीफते अमले ही यौम अल कियामा।

महसूस होती है कि मैं क्या कर रहा हूं। जब बंदे का ईमान कमजोर होता है तो अली ने कहा ना कि अगर ईमान होगा तो उसका फल क्या होगा? बोलो बोलो। नहीं भाई, शर्म आएगी। इस्तिहया और रजुल मिन नफ्से थमरतुल ईमान। बंदा अगर अपने आप से शर्माएगा तो वो क्या है? ईमान का फल है। अगर ये आ गया तो इंशाअल्लाह ताला मुझे माफी मांगने की तौफीक मिलेगी। और देखिए करबला में, ये वो वाली शर्म नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप को शामिल करने के लिए अहले बैत का खानदान इतने बाकमाल थे, इतने ईमान के दर्जे में आगे थे कि हर कोई तुला हुआ था, शर्म महसूस हो रही थी कि मेरा बच्चा अगर न जाए तो मैं फातिमा को क्या अंदर वो दिखाऊंगा, मैं खुदा के सामने क्या जवाब दूंगा कि अगर मेरा बच्चा न जाए। आज एक शहजादे का जिक्र करना है ना, देखिए ये उम्मे फरवा है कौन? यही बात, एहसास, अपने आप से शर्माना, अपने आप को शामिल करने की कोशिश करना कि ऐसा ना हो कि हम खताकार हो जाए। शबे आशूर की रात है, मौलाए कायनात ने, मतलब मौला हुसैन मज़लूम ने, बियाबान करबला में मुसल्ला इबादत को बिछाया है। उसी दौरान हुसैन मज़लूम के कानों में किसी के कदमों की आहट की आवाज़ आ रही है। मुसल्ले इबादत से फारिग हुए, देखा तो पता चला छोटा सा कासिम आया है। कहा बच्चा क्यों आना हुआ? कहा चचा जान माँ ने भेजा है। कहा अच्छा, माँ ने भेजा है, किस लिए भेजा है? कहा माँ ने कहा है जाओ और चचा से पूछ लो कि क्या कल मैदान जंग में शहीदों में तेरा हिस्सा या तेरा नाम होगा। शहादत की बात आनी थी तो हुसैन ने एक सवाल पूछ लिया अपने भाई के बेटे से। कहा बेटा कासिम, मरने की बात कर रहे हो, मौत तेरी निगाह में कैसी है? जवाब आपका जाना पहचाना है। जवाब आया शहद से ज्यादा मीठा। बस ये जवाब मिला ना तो हुसैन ने तसल्ली देने के लिए कहा, मरहूम मिर्जा अथर पढ़ा करते थे, हुसैन मज़लूम ने बेटा कासिम को कहा, कहा बेटा कासिम तू तेरे लिए पूछने आया है, मैं तुझे इतना बता दूं कि तो तेरा छोटा अली असगर है ना, वो भी शहीदों में शामिल होगा। बस जनाब कासिम ने अपने आस्तीनों को बुलंद किया और कहा चचा जान क्या जालिम खैमे तक आ जाएंगे? कहा नहीं बच्चा, मैं अपने लाल को पानी के लिए मैदान में जाऊंगा और जालिम उस पर तरस नहीं खाएंगे। हाँ आजादारो, ये रात का माजरा है। जनाब कासिम वापस चले गए। मेरे एक उस्ताद, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, एक उस्ताद मेरा है वो ये मसाइब को इस तरह से पढ़ते थे कि शबे आशूर को मौलाए कायनात जब खैमों के जायजा ले रहे थे उसी अस्ना में एक खैमे के पास आए और खैमे के बाजू में जब खड़े हुए तो खैमे के अंदर से एक आवाज को कान में सुना। क्या सुना? कोई खुदा का बंदा कह रहा है कि कल जो है ना शहादत और जंग का दिन है, इसलिए सबसे पहले मैं जान को कुर्बान करूंगा। वहां से सामने से किसी और आवाज बुलंद हुई और आवाज ने कहा, कहा नहीं बेटा, कल तू पहले शहीद नहीं हो सकता क्योंकि तू मौला की आंखों की ठंडक है। आजादारो आप समझ गए कौन बोल रहा है? ये जनाब अली अकबर है। और जवाब देने वाला कौन है जो उसको कह रहा है कि कल बेटा तू शहीद नहीं होगा क्योंकि तू आंखों की ठंडक है मौला की? और बोलने वाला फिर कह रहा है कल सबसे पहले मैं अपनी जान को कुर्बान करूंगा। अकबर ने जवाब दिया, चचा जान ये नहीं हो सकता, आप मेरे बाबा की कमर हो, अगर आप चल बसे बाबा की कमर टूट जाएगी। ये सब हुसैन मज़लूम सुन रहे हैं। इतने में कोने में से एक छोटी आवाज बुलंद
हुई और कहा, ऐ माजाया, ऐ भाई अली अकबर, कल न आप शहीद पहले होंगे। और चचा अब्बास को कहा

चचा जान न कल आप पहले शहीद होंगे पहले यतीम हसन अरे पहले यतीम हसन अपनी जान को कुर्बान करेगा। बस यतीम का नाम आना था। हुसैन मतलूब खैमे के अंदर दाखिल हुए, कासिम को बुलाया, सीने से लगाया, कहा कासिम अभी हम जिंदा है, अरे आप कब से यतीम हो गए। अजादारो रोज़े आशूर आया, उम्मे फरवा ने भेजा था कासिम को। आप सबने सुना है ना कि हुसैन मतलूब जब भी कासिम इजाजत के लिए आते हैं, हुसैन कहते हैं बेटा कासिम मुझे तुझ में से मेरे भाई की खुशबू आ रही है, बेटा मुझे तुझ में से मेरे भाई हसन की खुशबू आ रही है। बस मायूस हो गया छोटा सा शहजादा। उतने में एक बात याद आई कि वसीयत के तौर पर मुझे कहा गया था कि जब सबसे मुश्किल वक्त आए तो मेरे पास बाबा का एक खत है, किसी की रिवायत में तावीज का बात है, वो एक खत है। कासिम को याद आ गया, मौला के हुजूर में पहुंचे, मौला ने खत को खोला, अजब नहीं किस तरह से पढ़ा होगा। बस अचानक से मौला का इरादा हो गया, शायद शायद हसन मुश्तबा ने लिखा था ए मेरे भाई हुसैन मैं करबला में नहीं आ पाऊंगा, मेरा एक नुमाइंदा आएगा उसको रोकिएगा मत, मेरी तरफ से उसको मैदान में जाने देगा। अजादारो जनाब कासिम मैदान में चले बहादुरी के साथ जंग की, लेकिन एक मौका ये आया कि जब पिसर साद ने कहा क्या तुम इनको जानते नहीं, ये अली का पोता है, इसके साथ ऐसे जंग नहीं होगी। अरे लोगों ने साथ में हमले शुरू किए, किसी ने नेजा फेंका, किसी ने पत्थर बरसाए, किसी ने तलवार की बार की। एक मकाम आया छोटा कासिम जमीन पे गिरा, चचा को आवाज दी अजादारो खैमे से हुसैन मजलूम बहुत जल्दी से निकले, जालिमों ने देखा हुसैन आ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, एक तरफ के घोड़े दूसरी तरफ, अरे पहली तरफ के घोड़े इस तरफ दौड़े, बीच में माजरा क्या हुआ, शहजादा कासिम का लाशा पामाल हो गया। अजादारो किताबों में यह जुमला लिखा है, अभी थोड़ी देर के लिए अपनी निगाहों को मेरी तरफ पलटाइए। रिवायत मक्तल में लिखा है कासिम के लाशे के पास जब हुसैन मजलूम आए ना तो हालत तशहुद में बैठे इस तरह से, अपनी दामन में जो अबा थी उसको फैलाया और कासिम के लाशे के टुकड़े अरे चुन चुन के अपनी अबा में भरे। जब ये काम हो गया हुसैन खड़े हुए, गठड़ी बन गई, अब खैमे की तरफ हुसैन आ रहे हैं। ओ ना हो जैनब मिली होगी, जैनब ने शायद पूछा होगा माजा या कासिम का लाशा कहा, हुसैन ने शायद कहा होगा शहजादी जरा आहिस्ता से ऐसा ना हो उम्मे फरवा को पता चले। ये मैं कहता हूं अजादारों आपको पता है कासिम कौन है, मुख्तार का दरबार है। करबला के बाद मुख्तार के दरबार में एक जालिम को पकड़ा गया और उनसे मुख्तार ने पूछा है जालिम तू बता आशूर के दिन तूने क्या देखा है। तो जालिम ने कहा मुख्तार करबला के मैदान में आशूर के दिन एक मौका वो आया था कि जब हमने देखा कि खयाम हुसैनी से एक छोटा सा नौजवान निकला, उसका चेहरा दूर से जब हमने देखा ना तो लगता था यूं कि चौदवी का चांद नजर आया है। अजादारो अरे दुश्मन को कासिम का चेहरा चौदवी का चांद लगता है, कोई जाके उम्मे फरवा से पूछे उसका अला लअनतुल्लाहि अलकौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल लदीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदान बिक़ज़ाई व तस्लीम अल अम्रिहि मा तअल हुसैन।

0: अब पागल हो गई हैं क्या या फिर खेल रही हैं मुझसे? मुझे जलील करके मुझ पर हंसना चाहती थी।
1: क्या कह रहे हो इब्नानी, किस पर हंसूंगी?
0: जब कूफे के हजारों मर्दों की दरमियान से अपनी जान बचाने के लिए मुझे चुना, मेरे अंदर क्या देखा था? तुम्हें लगा कि मैं इतना बड़ा आशिक हूँ कि इश्क के लिए अपने अली के शियों का खून बहाऊंगा? मैं तुम्हें जल्लाद लगता हूँ या जासूस?
1: कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें दिल दे दिया।
0: अपने दिल की बात को बीच में ना लाओ, मैं तो तुम्हारे खेल में शामिल हो गया, अब मुझे और फंसाना चाहती हो? तुम भी जानती हो और मैं भी कि हम यहां क्यों आए हैं। अगर तुम्हारे ये हालात ना होते, अगर रेशम के बिस्तर में आराम फरमा रही होती तो मुझे अपना साथी कभी ना चुनती। तुम कहां और मैं कहां?
1: मतलब अब तक मुझ पर भरोसा नहीं? भूल गई थी कि मुझ पर तरस खाकर तुम यहां आए हो।
0: मैं अपने दिल की बात पर कायम रहूंगा, मगर बगैर किसी शर्त के, बगैर मुखबिरी और धोखेबाजी के।

0: अगर उसने शर्तें मान ली तो क्या मेरी बेटी तुम्हें बोझ लगने लगी है जो उसे नीलाम कर रहे हो? कल तक अमीरजादों और दरबारियों की बात चल रही थी और आज कूफे के कमांडर की बात क्या हो रहा है ये? काश अच्छे से परख लेते, इसके नए नक्श देख लेते, देखते हैं मशरिक से मगरिब तक और सारे इराक में हमारी आरजू परी जैसी बेटी से रिश्ता जोड़ना है। ऐसे में मैं बैठी रहूं और हिलाल के साथ शादी की हामी भर दूं? इससे ज्यादा बेहसब और नसब नहीं मिला था आपको नाइला के लिए? जानती हूं खराबी मुझ में है, क्योंकि अगर नाइला नईम की सगी बहन होती, अगर कनीज की बेटी ना होती वो, अगर मैंने उसे पैदा ना किया होता।
1: ठीक है, तुम एक दिन इस घर की कनीज थी, अगर निकाह के बाद इस इमारत की मसनत पर बैठी एक मलका बन गई जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। इतने सालों में खाने पीने मोहब्बत और ख्याल रखने में कोई कसर छोड़ी है मैंने? या नईम की इज्जत और एहतराम ज्यादा होता है या नायला का?
2: खुशामदी।
3: मेरे घोड़े को अंदर ले आओ।
2: जो
3: जितनी भी कोशिश करती हूँ दिल को सुकून पहुंचाने की, आपका हर काम उसके खिलाफ होता है। अब मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है।
0: फिर दिमाग खराब हो गया है इसका? दरवाजा खटखटाने का अदब नहीं है तुम्हें लड़की?
3: खुदा की कसम, बेहतरामी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या करूं, जान हलक तक आ गई है। मुझे बस एक ही बात कहनी है, या तो मुझे बगैर किसी शर्त के शादी करने की इजाजत दें, या बगैर इजाजत वो करूंगी जो नहीं करना चाहिए।

0: बात कर रही हो उस फटीचर की जिसका कोई हसब और नसब नहीं है, उसी की बात कर रही हो तुम?
1: एक बेहसब और नसब लड़के से शादी करना उस निकाह से लाख गुना अच्छा है जिसे कोई भी नाम दिया जा सकता है सिवाय शादी के। अगर मेरा सौदा करना चाहते हैं तो बेहतर है मैं हिलाल से शादी कर लूं।
2: फालतू बातें ना करो लड़की, मालो मनार की कमी नहीं है मेरे पास कि अपनी नामूस को बेचकर मनसब खरीदना पड़े। मैंने अगर कोई शर्त रखी है तो तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए रखी है।
1: सच तो यह है कि उसे चाहती हूँ, मोहब्बत हो गई है मुझे उससे, क्या करूं?
2: हिलाल या कोई और, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अहम हो जिसे सीधा करना चाहता हूं। तुम चाहती हो मैं शर्त हटा लूं? ठीक है, हटा लूंगा।
0: इतना ही
2: नहीं, तुम्हारी पसंद जो भी रहे मेरे पास भेज दो ताकि मैं खुद उससे बात करूं।

0: कुछ हुआ है क्या?
1: शक में गिरफ्तार हो गई हूं। एक तरफ से मीसम जो खत ना लिखने पे बज़िद था और दूसरी तरफ बासित जो खत भेजने का वाकया। समझ में नहीं आ रहा फिर से खत लिखूं या नहीं, नहीं पता।
0: मतलब फिर से खत लिखने का जोश आया है? इस मर्तबा कौन ले जाएगा, आप खुद या मैं? खुदा की कसम आप जो कर रही हैं हराम है। कह रही थी ना कि जनाबे हबीब ने एक खत लिखा है तो उसी पर दस्तखत कर दो, बस इतना सा ही काम करना है आपको। खुद खत लिखने की जिद छोड़ दो, दावत देना अहम है।
2: माँ बाबा आए क्या?
0: नहीं मेरी जान, नहीं आए।
2: मुझे लगा आ गए हैं।
0: आ जाएंगे मेरी बेटी, आ जाएंगे मेरी जान।

आहया ने हबीब के खत के बारे में बताया? अगर दस्तखत करने के लिए आना हो तो सूरज निकलने से पहले तैयार रहना, फिर कोई शिकवा ना रहे कि तुम्हें किसी ने इत्तला नहीं की थी।

0: हक के तहत मेरे बेटे को शियों के साथ बैठने से रोक रहे हैं।
1: शियों के सभी बुजुर्ग इकट्ठा हैं और उनकी जान को खतरा है। पहले से सबका नाम बताया गया है मगर उनका नाम नहीं है।
2: सलाम बानो।
0: सलाम।
2: सुनो भाई, जनाबे हबीब ने फरमाया है कि सामिया खातून और उनके बेटे ये उनके मेहमान हैं और इनके यहाँ आने में कोई हर्ज नहीं है।
1: जो हुक्म तशरीफ लाए।
2: आइए मेरे साथ।
1: मशाल अंदर नहीं ले जा सकते।

0: कौन है जो ना जाने के अर्श से मिलने वाली रस्सी इमाम है? अगर कमाल और मगफिरत की बात है तो इमाम का होना जरूरी है। हुकूमत आले अली के अलावा किसी के भी हाथ में गजबी है, जुल्म है।
1: खुदा की कसम, हम दुनिया और आखिरत दोनों खो बैठे हैं। मलौन ने हुक्म दिया है कि हुकूमती खजाने में शियाओं को हिस्सा ना दिया जाए। इसका मतलब तो फकीर और बदबख्त होना है।
0: खुदा का सलाम हो आप पर। इमाम का जिस्म और रूह रहमत और बरकत है। परवरदिगार का दस्ते सखावत आसमान और जमीन सभी दरवाजे खोल देगा, मगर हमारे आज का दर्द पानी की कमी, बारिश ना बरसना सोना चांदी वगैरह नहीं है, बल्कि हिदायत और अखलाक का नूर है जो खामोशी की जानिब बढ़ रहा है।
2: खुदा की कसम ऐसा ही है। अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे ताकि इमाम तशरीफ लाए।
0: या अल्लाह,
2: अली की हुकूमत ज़हन में रखिए और दिलों को मजबूत कीजिए।
0: माफ करें, इंतजार करना पड़ा।
3: आपकी माफी कहाँ और मुझ जैसा गुनाहों में मुब्तिला शख्स का?
0: आपकी हुस्न नजर है। लोगों, जरा गौर फरमाइए, ये खत जनाब सुलेमान इब्ने सुराद, मुसैयब इब्ने नजमा, रूफा इब्ने शद्दाद और मुजहकीर की कोशिश और ताईद के साथ तहरीर हुआ है। पढ़ दिया गया और आप सभी ने सुन लिया। अगर हामी भरते हैं तो तवक्कुल कीजिए और दस्तखत कर दीजिए, ताकि आपके तवक्कुल के नूर से परवरदिगार की अजीम रहमत नाजिल हो इंशाल्लाह।
4: इंशाल्लाह।

0: Assalamu alaikum.
1: Walaikum assalam.
2: Parvardigar ka salam ho tum par. Hai misam jo suli par chadhaye jaoge. Aur Ali ki mohabbat mein duniya se jaoge. Inshallah.
0: Walaikum assalam habibe ahle bait par. Tumhe is hal mein dekh raha hu. कि बदन पे सर नहीं और चेहरा खून में डूबा है फातिमा के लाल किले परेशान दश्तो बयाबा में ठोकरे खा रहे हो
2: इंशाल्लाह खुश आमदीद तशरीफ लाए
0: सलाम अलैकुम
3: वालेकुम अस्सलाम

0: क्या हुआ मीसम, खत का मजमून पसंद नहीं आया क्या?
1: ये जान लीजिए कि आपके अलावा हमारा कोई ईमान नहीं है, तो हमारी जानिब आइए। खुदा की कसम, इस खत में बहुत से ऐसे नाम देख

0: बेटा, अगर अभी और इस लम्हे तुम्हारा दिल इस खत पर दस्तखत के लिए राजी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना बेटा। मेरा दिल नहीं चाहता कि खुद को मजबूर करो और आखिरत में अपने आप से शर्मसार रहो। यहां पर होना ही इस बात की गवाही है कि तुम्हारा दिल आले अली के साथ है।
1: मेरा दिल राजी है, अगर इजाजत दें तो अभी दस्तखत करना चाहूंगा।

0: Calma. Calma. Calma. उठो, मेहमान आया है।
1: कौन?
0: मेरे बाबा। शुक्रिया बहू।
1: नौश्वर भाई।
0: तुम दोनों रोजे से हो ना? अगर खुदा कबूल करे, कबूल हो इंशाल्लाह। आप क्यों वाजिब को छोड़ बैठे हैं?
2: एक हफ्ता रहा, देखा हाथ पैर में जान नहीं बची। उसी खुदा ने जिसने रखने का हुक्म दिया है, ज़ईफ़ इंसान पर रोजे को हराम किया है। मैं हराम काम नहीं करता।
0: आपको देखकर लगता है कि आज तिजारत खाना नहीं आने वाले हैं।
2: देख रहे हो कि तुम्हारे बच्चों के इंतजार में हूँ और रहूंगा। जाग जाएंगे तो उन्हें देख कर खुद ही आ जाऊंगा। तुम मेरा इंतजार ना करो।
0: नौश फरमाइए।
2: बैठो।

0: उस तिजारत खाने में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अपना सब कुछ खो दिया और आफत से टक्कर ली। बड़ा घर है तुम्हारे पास, बेहतरीन शौहर, दो बेटे हैं, किसी भी औरत का अच्छा नसीब क्या है। नेमत को ठुकरा दिया तुमने बहू, अपनी किस्मत को खुद ठोकर मारी।
1: आप औरतों के बारे में क्या जानते हैं बाबा? खुशकिस्मती का नुस्खा बांटते हैं और जो भी आपकी इताद ना करे उसे करीबियों की फहरिस्त से बाहर निकाल देते हैं। बाप के पुरमन घर को आपके बड़प्पन की वजह से छोड़ा और कूफा की तरफ आ गई। मुझे क्या पता था कि मेरी सुबह शाम नईम की लातों और घूसों में गुजरेगी। आपके हिसाबों किताब से हम औरतें आपकी अय्याशियों में अजीज हैं और बाकी वक्तों में जलील। एक बार भी मुझ पर ध्यान देकर इंसानों में शुमार नहीं किया आपने। हमें और कनीजों में आपकी नस्ल का बोझ उठाने के अलावा कोई फर्क नहीं है। आपके नजदीक आपके अलावा, आपके माल और अम्वाल के अलावा, उस मनहूस तिजारत खाने के अलावा कुछ भी अहम नहीं। हम सब कठपुतलियां हैं आपकी। जब किसी काम के न रहे तो हमें फेंक दिया जाएगा और बस। हत्ता तुम्हारी बेटी की माँ, वो तो लगता है कि आसमानों से आई हुई कोई परी हो। उसकी बदकिस्मती की भी बारी जरूर आएगी।
0: शहद का प्याला,

0: अपना मुंह मीठा कर लो।
1: रोजे से हूं मैं।
0: तुम्हारे ताक लहजे को मीठा कर देगा।
1: मेरी कड़वी किस्मत किसी भी शहद से मीठी नहीं हो सकती।
0: सुबह बंद। जो भी गिला दिल और दर्द सीने में था सब बोल चुकी। खामोश रहो वरना तुम्हारी जबान हलक से बाहर निकाल लूंगा। बिल्कुल खामोश रहो, सर झुका कर रहो, समझी के नहीं। तुम्हारा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम्हारा यहाँ रहना मुसीबत और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। अपना सामान इकट्ठा कर लो, शाम को जाओगी अपनी बहन के पास, वह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डर है मेरी आंखों के सामने रहोगी तो कुछ ऐसा कर दूंगा कि फिर उसका जवाब ना दे सकूं।
1: खुशखबरी हो जनाब औहद, चली जाऊंगी, मगर जान लीजिए कि अपने बेटों के साथ शाम की तरफ जाऊंगी।
0: ठीक है, खुदा का शुक्र है।
1: काश उस दिन जुनैद ने बयाबा में ही तुम्हारी बेटी का खून बहा दिया होता तो तुम्हारे बुढ़ापे और शिकस्त को अपनी आंखों से देख सकती।

0: ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। जरा ठंडा शरबत पिला दो, प्यास मारे डाल रही है। खुदा बरकत दे, खाने की खुशबू पूरे गली में फैल गई है। क्या बात है, औहद साहब बड़े दिल वाले और सखी हो गए हैं। हाँ,
1: उम्मीद में मत रहो, ये बड़े लोगों के निकाह का खाना है।
0: किसकी शादी?
2: जुनैद की बीवी यहाँ क्या कर रही है?
1: जनाब, औहद ने हुक्म दिया था कि सभी नौकरों को काम पर लगा दिया जाए। वालिया को तो आप भी जानती हैं, कहा था कि उसका मुंह बंद करे और उसकी

0: जेब गरम करे, और ये भी कहा था कि यहीं पर रहे।
1: तुम्हें क्या काम है?
0: मैं यही देखने आई थी कि मेरा कोई काम तो नहीं है।
1: नहीं जाओ।
0: जी।
2: नायला बेटी, अब कोई काम नहीं बचा, चला जाए।
3: किस्मत वाला है दामाद जो हमारी दुल्हन का दिल ले गया है। खुदा बरकत दे।
2: तुम्हें मुबारक हो, घर चलो। रात के लिए बहुत काम बचा है ना पीटर।

0: pretty cold. Mm. Huh?
1: Hot night.
0: अरे ये मिठाई भी खा के देखो।
2: बिल्कुल।
0: ये तो सही।
1: इसमें मुझे थोड़ी लस्सी दे दीजिए।
2: खुशामद।
0: शुक्रिया।
2: जरा इधर तो आओ।
3: मामूजी।
2: खाना खाने चलें।
3: इतना वक्त हो गया, हमने साथ में खाना नहीं खाया।
2: हाँ तो अब खा लेंगे।
3: मामू, मुझे रोजा और रमजान बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते।
2: क्यों?
3: क्योंकि मुझे भूख लग जाती है।
4: बहुत खुशामद।
5: नावल
4: मजा आ गया।
5: या अल्लाह।
0: सलाम।
2: खुदा आपकी उम्र लंबी करे, आपकी नजर कबूल हो।
6: खुदा कबूल करे।
2: खाने के लिए जो गोश्त भेजा था वो काफी था।
6: आपके हाथ में हमेशा खैर व बरकत रही है। बस अफसोस इसका है कि आपकी बेटी नहीं आई।
2: आज दुकान पर बहुत काम है, मदद करने के लिए रुक गई है।
6: माफ कीजिएगा, बासित का काम भी आप पर आ गया।
2: कोई बात नहीं।
6: उम्मीद करती हूँ हिलाल के काम से राजी होंगे।
2: बासित जब था तो उसके काम में ज्यादा रौनक रहती थी, पर खुदा का शुक्र है अब तो लोगों ने हिलाल को भी अपना लिया है।
6: सलाम।
2: सलाम बेटी।
6: ईद मुबारक हो।
2: तुम्हें भी मुबारक हो।
3: देखा मामू जान, रमजान का महीना नहीं है तो साथ में खाना खा रहे हैं।
7: तुम्हें पता नहीं खाना खाते वक्त बात नहीं करते।
2: क्यों डांट रही हो?
7: बस करो, ज्यादा खा लोगी तो पेट दर्द करेगा।
3: मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है।
2: ईद मुबारक हो। ईद है, गुस्सा क्यों कर रही हो?
7: मेरे भाई की कमाल की ईदे ने मेरा मिजाज बिगाड़ दिया।
2: उठो मामू की जान, अंदर जाओ।
3: पर मुझे भूख लगी है।
2: ये और दोने वाले तुम्हारे लिए, अंदर जाओ। क्या हुआ, कुछ पता चला है क्या?
7: एक महीने से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। दिन रात पेट में बच्चा लिए इस बेवा औरत के पीछे तुमने लगा दिया है ताकि असली बात से तुम मुझे गुमराह कर सको, है ना?
2: बातें क्यों बना रही हो? कौन सी असली बात?
7: शादी। आज तुम्हारी शादी है और ये बेवकूफ बहन बिना बात के यहाँ वहाँ फिर रही है और तुम अब भी नहीं बताना चाहते।
2: अगर ऐसा ही मिजाज रहा तो कुछ नहीं बताऊंगा।
5: कुछ अजमियों की रोजी रोटी बंद नहीं हुई और हिलाल भी काम पर लग गया है, ये बहुत शुक्र का मुकाम है। मेरी बात सुन रही हो हिलाल की माँ?
6: नहीं फाजिल, मेरा ध्यान उस लड़की पे चला गया। एक महीना तो बस यूं ही गुजर गया और अब जब बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया है, अभी तक शौहर वापिस नहीं आया। दुआ करो फाजिल, दुआ करो इस ईद के सदक़े में मेरे दामाद की मुश्किल आसान हो जाए।
2: इंशाअल्लाह। उसकी बेचैनी कम नहीं हुई?
6: नहीं, उसका ईमान इम्तिहान की मंजिल पर पहुंच गया है। जब इमाम आएंगे इंशाअल्लाह उनके हुजूर के सदके में जो भी बेखता असीर हुए हैं आजाद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह।
7: बड़े गैरतमंद हो सामिया के बेटे। मैं हैरान हूँ कि खुदा ने तुम्हारे दिल में क्या रखा है कि तुम इस हद तक अनापरस्त और खुदगर्ज हो।
2: कहा ना ऐसा ही।

0: आज राहतों कुछ नहीं बताऊंगा।
1: पहले ही कहना चाहिए था जो तुमने नहीं कहा। जब तुम्हारी गैरत जाग उठी थी और आवहद की बेटी की जान बचा रहे थे, तब अपनी माँ का ख्याल नहीं आया था? पता चला तो मर जाएंगी हिलाल।
0: इतने हफ्ते तुम्हें कहता रहा कि इसे मान लो। कितनी बार कहा कि लालच और हवस की वजह से शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, पर तुमने यकीन नहीं किया। मैं मजबूर था। जब मैंने कहा और तुमने कुछ नहीं किया, तो शिकायत भी मत करो। माँ तो सुबह से शाम तक खत में मसरूफ रहती हैं और मेरा दीन ईमान टटोलने के अलावा मेरी खबर भी नहीं रखती। तुमने भी तो आखिरी बार कहा था कि अपना मुंह बंद रखो। मैं भी तुम्हारे लिहाज में चुप रहा।
1: लिहाज करने वाले होते तो मुझे भी दावत देते ना। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे दुल्हा बनने का अरमान जिंदगी भर मेरे दिल में रह जाएगा।
0: अगर उनकी रोजी रोटी को हराम नहीं समझती तो फिर जरूर आना, मुझे अकेला मत छोड़ना।
2: आहिया।
1: जी,
2: कैसा है वो?
1: शुक्र है, बस जगह कम पड़ गई है, लात मार रहा है।
2: हिलाल की बात कर रही हूँ। कल रात भर नहीं सोया।
1: सच में? क्यों?
2: तुमसे पूछ रही हूँ। हम दोनों के बीच इतनी फूट पड़ गई है जैसे दो अजनबी हैं। आया, जब बातें कर रहे थे तो हिलाल ने कुछ बताया नहीं?
1: जैसे कि?
2: मुझे क्या पता, मेरे दिल में आग लगी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि बासित की वजह से फिर से आहत से मिल गया हो। खुदाया, पता नहीं जब ये पेट में था तो क्या खा लिया था कि ये लड़का इतना सादा लोह और ना समझ हो गया है।
1: इस बार बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा बासित के लिए भी बचा लूं।

शरीयत दुआ के लिए बहुत अहम जगह है, बाद रिवायतों में है भी नहीं, बाद दुआओं में है कि अय खुदा तुझे उन औलिया का वास्ता जिन्होंने तुझे सफ़ा और मरवा के दरमियान पुकारा। सफ़ा मरवा कबूलियत दुआ के लिए बहुत अहम जगह, भाई वहाँ जनाब हाजरा की वो दुआ कबूल हुई जिसके नतीजे में जमजम का पानी आज तक हमको और आपको मिल रहा। ऐसी दुआ किसकी कबूल हुई होगी कि एक गिलास पानी मांगा तो दिया देने वाले ने और इतना दिया इतना दिया इतना दिया कि जनरेशन हजारों साल गुजर गए और वो पानी मिल रहा। तो दुआ के लिए बहुत अहम जगह है सफ़ा और मरवा। अब यहाँ सफ़ा मरवा मेरी ज़बान पे आया तो एक जुमला में फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो तो सब चीज़ें जानते हैं। ज़माने का इमाम मक्के से ज़ाहिर होगा, यही कल रात की मजलिस का आखिरी हिस्सा था जिसे आज कंप्लीट करना, मगर ज़माने का इमाम मक्के में ज़ाहिर होगा कहाँ से, खाने काबा से, यानी खाने काबा के बिल्कुल सामने से। मौला कहाँ से ज़ाहिर होंगे, मौला का ज़ुहूर भी तो इमाम ज़माना के साथ साथ है ना। मौला जो फरमाते हैं कि अना दाबतुल अर्ज़, वो जो कुरान में आया है कि आखिरी ज़माने में दाबतुल अर्ज़ निकलेगा, वो तो मैं हूँ। नहीं, मैं मौजू से ज़रा हट रहा हूँ, सब्जेक्ट से नहीं हटना चाहता चाहे कितनी ही इम्पोर्टेंट बात क्यों ना हो। दाबतुल अर्ज़ इमाम ज़माना का, अब वो मैं सिपाही तो नहीं कह सकता, मौला तो खुद इमाम के भी बुज़ुर्ग हैं, इमाम का वो साथी होगा दाबतुल अर्ज़, जिसका काम ये होगा कि हर एक की पेशानी के ऊपर अपनी अंगूठी से एक मोहर लगाएगा, जिसके बाद मोमिन है तो लिखा हुआ आ जाएगा मोमिन, काफिर है तो लिखा हुआ आ जाएगा काफिर। आजकल ये चिप्स और माइक्रोचिप्स और स्कैनर और ये सारी चीज़ों से ये हदीसों का समझना आसान हो गया है, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। मौला सफ़ा और मरवा के बीच से ज़ाहिर होंगे। ज़माने का इमाम अगर खाने काबा के सामने, सामने से मतलब है काबे का दरवाज़ा और मकाम इब्राहिम के बीच में से ज़ाहिर होंगे, तो मेरा मौला सफ़ा और मरवा के बीच से ज़ाहिर होगा और वही हर एक की पेशानी पे लिखेगा कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। वली की मोहब्बत तो वैसे ही मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, रिवायतों पे रिवायतें हैं, लेकिन मैं मौजू से हट रहा हूँ, बात ये कर रहा था कि ज़माने का इमाम ज़ाहिर हो, कब ज़ाहिर हो। अब ये हज की जितनी दुआएँ होती हैं ना, सफ़ा मरवा की दुआएँ इसमें बहुत अहम, उसका भी आखिरी जुमला वही है जो तवाफ की दुआओं का आखिरी जुमला है। दोनों दुआओं का, तवाफ में एक दुआ नहीं, बहुत सारी दुआएं आप पढ़ते हैं, आप उमरे पे जाएं कि हज पे जाएं, तवाफ तो करते हैं, और सफ़ा और मरवा की दुआएं भी बहुत सारी। दोनों के आखिरी दुआ यह है कि अल्लाह उम्मा कन्नी बिमा अतैतनी, खुदावंदा मैंने बहुत कुछ मांगा। तवाफ की दुआओं में भी आप मांगते हैं हाजात, और सफ़ा और मरवा में भी मांगा बहुत कुछ, जितना तू दे दे मुझे उस पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि आप मांगते बहुत कुछ है, नहीं मिलता है तो कंप्लेन करते हैं। लेकिन नहीं, हो सकता है जो कुरान कह रहा है ना कि जिस चीज़ को तुम पसंद कर रहे हो कि तुम्हें मिले, वो तुम्हारे लिए शर, और आखिर में अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि ऐसा क्यों है कि तुम्हें एक चीज़ पसंद है हम नहीं दे रहे, तुम्हें एक चीज़ नापसंद है नहीं चाहिए और वही तुम्हें मिल रही है, क्योंकि वल्लाह यालम व अंतुम ला तालम, अल्लाह जानता है तुम्हारे फ्यूचर को लेकिन तुम नहीं जानते अपने फ्यूचर को। एक आध रिवायत हमारे यहाँ ऐसी आती भी है जो सिर्फ हमको समझाने के लिए है, वरना अल्लाह का रसूल भी जानता है, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ा रहे हैं। जब पैगंबर मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं ना, तो लोगों के अंदर एक कंपटीशन होता किस चीज़ का, हर आदमी को मस्जिद में जल्दी आना है, रसूल के पीछे पहली सफ में बिल्कुल पीछे खड़े होना। अब हर आदमी आने की कोशिश करता है, लेकिन कभी इनका चांस बनता है, कभी उनका चांस, कभी उनका चांस, यानी मस्जिद में सब आते हैं, पहली सफ में जगह भी मिल जाती है, लेकिन हर आदमी की ये ख्वाहिश है, विश है, पसंद करता है रसूल के पीछे नमाज का मौका मिले। एक ऐसा सहाबी, बहुत लंबा वाकया है, बहुत तफसीली बात है, लेकिन चूँकि मैं सिर्फ आयत को एक पहलू को समझाने के लिए यह अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए बहुत मुख्तसर कर दूँ। तो अब यह है कि किसी दिन एक को जगह मिल गई पैगंबर के पीछे, बी ज़रा देर से आए, उनको बराबर में जगह मिली, किसी दिन बी को जगह मिली तो सी को बराबर जगह मिली, किसी दिन एक्स को जगह मिल गई, किसी दिन वाई को,
किसी दिन नहीं बल्कि दिन

में जितनी नमाजें, कभी ये कभी वो कभी वो, और अच्छी चीज है। एक सहाबी ऐसे जो हमेशा पहली सफ में बिल्कुल पैगंबर के करीब जगह हासिल कर लेते, बड़ा पक्का नमाजी और बहुत वक्त पर आता, लेकिन जब पैगंबर ने उससे जरा उसके हालात पूछे, पता चला बहुत ही गरीब, घर में खाने को कुछ नहीं। वो जमाना के जब मुसलमान पेट पर पत्थर बांधा करते थे, पैगंबर ने कहा खुदा बंदा ये ऐसा नमाजी, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, सूरह ताहा की आयत है ना, जो मेरे जिक्र यानी नमाज से मुंह फेरता है मैं उसकी जिंदगी को बहुत उसके लिए तंग कर देता हूं। रोजी में कमी का एक बड़ा सबब नमाज से लापरवाही भी है। लेकिन नमाज मेरा मौजू आज का नहीं है, कितने सारे मौजूद शुरू करूंगा, किसी को कंप्लीट भी तो करना है ना किसी सब्जेक्ट को। तो अब बात यह है कि पैगंबर ने कहा इतना ऐसा नमाजी, इतनी मोहब्बत इसे नमाज से, इसकी ये हालत, अय खुदा जरा इसकी जिंदगी में आसानी पैदा कर दे। खुदा की तरफ से जवाब आया कि हबीब मैं जानता हूं इसके बारे में, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है, चलो ठीक है, जिब्राइल आ रहे हैं, एक दिरहम लेके आ रहे हैं जन्नत से, वो इसको कर्जा दे देना। जिब्राइल एक दिरहम लेकर आए, पैगंबर ने उसको कर्जा दे दिया कि दिरहम लो, इससे अपना बिजनेस शुरू करो। बिजनेस शुरू की, पैगंबर का दिया हुआ गिफ्ट है अल्लाह की बारगाह आसमान से आया हुआ, तो अब ये कि बरकत, एक दिरहम से कारोबार शुरू किया तो जरा कारोबार बढ़ गए। अब जब कारोबार बढ़ गया तो फिर अब वो उतना टाइम तो नहीं रहा, अब वो पहली सफ में उसको जगह नहीं मिलती, वो सेकंड में आ जाता है। दिल को इत्मीनान, हर आदमी के पास एक्सक्यूज होता है ना, इन्नल इंसान आला नफ्स ही बसीरा वला अल्का माजीरा, अब कोई बात नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं है, जमात में आना है, पैगंबर के करीब है, पहली सफ नहीं सही दूसरी सफ, कारोबार और बढ़ गया, आखिरी सफ कारोबार और बढ़ गया, देर से आया जमात खत्म हो गई। जमात वाजिब तो नहीं है ना, जमात का सवाब है वाजिब नहीं है, कजा नहीं होनी चाहिए, पढ़ ली उसने नमाज पैगंबर के बगैर फुरादा, कारोबार और बढ़ गया। एक दिन कोई ऐसी पार्टी उसकी दुकान में बैठी थी कि बहुत बड़ा डीलिंग हो रही थी, इतना टाइम लग गया कि नमाज दो रह नहीं कजा हो गई। ओहो बहुत गलत किया, आइंदा नहीं होगा, तौबा तौबा कर ले, तमाचे मारे जो हमारे यहाँ बाद लोग करते, और रेगुलर हो गया। लेकिन चार दिन के बाद उससे बड़ी कोई पार्टी आ गई। हर चीज गुना इसी तरह है ना, कि एक दिन पहले दिन तो बहुत अफसोस होता है, फिर हैबिट बन जाती। पैगंबर इस्लाम ने एक दिन अपने सहाबियों से सवाल किया कि वो जो इतना रेगुलर नमाजी था वो कई दिनों से नजर नहीं आ रहा, कहीं ट्रेवल पे तो नहीं गया, कहीं बीमार तो नहीं है, अगर बीमार है तो उसकी जाके इबादत करना है, मिजाज कुर्सी करना है, तो इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत। कहा नहीं यार रसूल अल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। इधर पैगंबर को ये इत्तला मिली, इधर आसमान से पैगाम आया, ऐ हबीब इसी वजह से मैंने उसको गुर्बत में रखा था, तुम क्या चाहते हो, उसकी यह हालत चाहते हो, बहुत पैसा, अब उसके पास खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है, जिस प्रॉब्लम की वजह से रसूल की आंखों में आंसू आ गए थे, वो हालत चाहते, यह हालत चाहते हो या वो पुरानी हालत चाहते हो, जब वो रेगुलर नमाजी था, किसी तरह से उसका गुजारा हो तो जाता था बड़ी मुश्किल के साथ, लेकिन नमाज कोई उसकी नहीं छूटती थी। कहा खुदाबंदा वो वाली हालत अच्छी है, कहा तो जाओ जाके उससे अपना कर्जा वापस मांग लो। पैगंबर गए उसकी दुकान पे, वो तो खुशी से खड़ा हो गया, आइए आइए या रसूल अल्लाह बैठिए, क्या खिदमत करूँ, चाय चाहिए कि कॉफ़ी चाहिए, या फिजी ड्रिंक लेंगे कि खाने का वक्त है, तो क्या हुआ, खुशी के मारे बुरी हालत उसकी। पैगंबर ने कहा मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अब तो अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, मेरा एक दिरहम वापस कर लो। अरे या रसूल अल्लाह आप एक दिरहम की बात करते हैं, आप एक मिलियन दिरहम लेके जाइए, बहुत कुछ अल्लाह ने दिया। कहा नहीं ओनली वन दिरहम। अब वो जब दिरहम निकला उसके माल में से तो अब उसको घाटा होना शुरू हुआ, लॉस, और ऐसा रोज का रोज लॉस कि एक दिन खाली दुकान में बैठा है, कोई पार्टी नहीं है, कहा चलो मस्जिद में चल के नमाज जमात ही पढ़ लो। अब जो और लॉस हुआ तो और भी कुछ काम नहीं हो रहा, कहा पहली सब में पहुंच जाओ। एक दिन रसूलुल्लाह ने देखा कि पता चला उसकी दुकान लॉक ताला पड़ गया, खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गया, लेकिन मस्जिद में बिल्कुल पैगंबर के पीछे खड़ा हुआ है। असा अन तुहिब्बू शैअन व हुआ शर्रुन लकुम, कभी तुम कोई ऐसी चीज अल्लाह से मांगते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है तुम्हारा फ्यूचर, अंतुम ला तालमून। तो अब ये हर दुआ के बारे में, दुआएं तो आप बहुत ज्यादा मांगते हैं, बल्कि आज अय्याम अज़ा का जो सबसे बड़ा दिन होगा आशूरा, दुआएं अलकमा आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, स्क्रीन पे तर्जुमा देखेंगे, उसमें कितनी हाजिर

जाते हैं। मैंने पहले दिन कहा था ना कि किसका दिल चाहेगा कि आशूर के दिन अपनी हाजतें तलब करे इमाम ने। ये दुआए अलकमा तो मासूम ने इरशाद फरमाई। अगर कि अलकमा नाम में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उस बात को छोड़ दीजिए। तो अब शर उन लकुम, जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे लिए नुकसान दे, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इसलिए जिस हालत में अल्लाह ने रखा है राजी रहो। अब इसमें हमारी सबसे बड़ी दुआ थी। हमारी सबसे बड़ी दुआ क्या है? रिस्क के बारे में नहीं, सेहत के बारे में नहीं, औलाद के बारे में नहीं। जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आजकल बढ़ते जा रहे हैं।

बारे में नहीं, हमारी सबसे बड़ी दुआ यह है कि अज्जल अल्लाह तआला ज़हूरत ज़हूर इमाम हो जाए, यह सबसे बड़ी हमारी दुआ, यह सबसे इंपॉर्टेंट हमारी दुआ। और एक ऐसी दुआ है कि बाकी सारी दुआएं इसकी वजह से खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। भाई इमाम आ जाएंगे तो इसके बाद ये सारे आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इमाम के आने के बाद इस दुनिया में कोई आदमी बीमार नहीं होगा, डॉक्टर्स के लिए जरा परेशानी है, लेकिन खैर क्यों परेशानी, नहीं उनके लिए भी नहीं, क्योंकि रिस्क का जरिया किसी को रिस्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। इमाम के आने के बाद जमीन तो खुद ही अपने खजाने बाहर निकालेगी, रिस्क का मसला नहीं होगा, औलाद का मसला नहीं होगा, शौहर बीवी के झगड़ों का मसला नहीं होगा, जमात की क्या रिकंसाइलिंग कमेटी के अंदर फाइलों पर फाइलें डिवोर्स की नहीं आएंगी, इमाम के आने के बाद सारे मसले हल, सबसे बड़ी यही दुआ। मगर यह सवाल यह पैदा होता है कि इमाम क्यों नहीं आ रहे। तो यहां पे दो बातें थी, एक बात मैंने कल कही थी और दूसरी बात मैंने अभी बात नहीं, दो सवाल। मेरा पहला सवाल यह था, किसी ने कहा मौलाना आपने इतनी हदीसें पढ़ी, इतने सालों से इमाम का जिक्र कर रहे हैं, आपका अंदाजा यह है क्या है कि कब इमाम आएंगे, वो जो साइंस ऑफ जहूर हैं उसमें से कितनी पूरी हो गई। अब मैं आपको जितनी भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है और जो मेरे असातिज़ा जिनमें से बाज मरजहियत के मंजिल पर पहुंच चुके, उन सब के जो रिसर्च है वो बता रहा हूं। ज़हूर इमाम की जितनी निशानी आपने पढ़ी हैं वो सब अपने जहन में रखिए, लेकिन या तो इमाम कल आ जाएंगे या इमाम अभी 1000 साल बाकी है इमाम के आने में या 2000 साल बाकी, ये निशानियों से धोखा मत खाइए। ये जितनी भी निशानियां आप पढ़ते हैं, और आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया में कोई वाकया हो किसी ना किसी तरीके से उसको ज़हूर की निशानी बना देते हैं। हत्ता ये चंद महीने पहले वो टाइटैनिक को देखने के लिए सब मैरीन में कुछ लोग गए थे जिनमें 2 पाकिस्तानी भी थे, उसको भी ज़हूर इमाम की निशानी बना दिया। खैर तो अब ये जो एक आजकल तरीका चला, लेकिन जो वाकई सीरियस निशानियाँ वो सब भी ऐसी हैं कि कई मरतबा वो दुनिया में आ चुकी हैं, फिर ख़त्म हो गई, आ गई फिर ख़त्म हो गई। मसलन हज नहीं होगा जिस साल इमाम आएंगे। अब आप जाइए इस वक्त इंटरनेट पर सर्च कीजिए, अगरचे इंटरनेट पर रिलाई नहीं करें लेकिन सर्च करें कितनी मरतबा इस्लाम की हिस्ट्री में हज को बंद किया जा चुका। ख़ास तौर पर जो मैंने कल एक इशारा किया था कि जब एक बहरीन का एक हाकिम हजर अस्वद को खाने काबा से उखाड़ के ले गया तो उस वक्त तो 2-3-4 साल हज नहीं हुआ। बगदाद की तबाही, कितनी मरतबा बगदाद तबाह हो चुका। तो निशानियों पे भरोसा ना कीजिए, आपको हर वक्त अलर्ट बैठना है, किसी वक्त भी इमाम आ सकते हैं और हो सकता है कभी भी ना आए। मैंने कभी ना आए का मतलब यह है कि हमारी ज़िंदगी में कभी ना आए। मगर एक सवाल, इमाम जाहिर हो, हर एक की दुआ जाहिर होना चाहिए और हमें इमाम की ज़ियारत मिले, लेकिन याद रखिए इमाम की ज़ियारत से ज़्यादा अहम, अब मैं एक बहुत अजीब जुमला कहूँगा इसके बाद, इमाम की ज़ियारत से ज़्यादा अहम है इमाम की रिजायत, इमाम हमसे राज़ी हो। ज़ियारत हम कर रहे हैं और इमाम हमसे राज़ी नहीं। रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने वाले कितने सारे ऐसे थे कि पैगम्बर की तरफ से उन पर लानत पड़ती थी और पैगम्बर के पास बैठे हुए। तो ज़ियारत इतनी अहम चीज़ नहीं है जितनी रिजायत। नहीं, और जुमला मैं बदल रहा हूँ, हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमाम हमारा इंतज़ार करें। क्या ये भी हो सकता? जी ये हो नहीं सकता, हो चुका है इस्लामिक हिस्ट्री में। और वो जो कल मैंने एक वाकया पढ़ा था तो उसमें किसी ने, यहाँ नहीं यानी लंदन में नहीं, ये तो मैं कई जगह पढ़ता हूँ कि करबला की ज़ियारत पर मोमिन जा रहा है, ज़माने के इमाम ने रोक दिया, कहा तुम्हारे बाप की खिदमत ज़्यादा ज़रूरी, बाप की खिदमत करना। वाकया किसी ने कहा मौलाना ये तो एक ऐसा वाकया है गैबत का है, कोई अथेंटिक कोई सोर्स कोई ऐसी चीज़। उवैसे करनी का वाकया किसी को याद नहीं, उवैसे करनी कौन थे? और ऐसे सहाबी थे ना कि जो पैगंबर की खिदमत में आना चाहते हैं माँ मना कर रही, और बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी तो कहा जाओगे स्टे नहीं करोगे फौरन आ जाओगे। और जब उवैसे करनी यमन से आए, करन एक छोटा सा गांव है बिटवीन मक्का एंड यमन, जब आए पैगम्बर मदीने में नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं थे, और ये भी नहीं पता कब वापस आएंगे, और माँ ने कहा था कि बस जाओ और फौरन आ जाओ। पैगंबर के सिटी में पहुंच चुके हैं मगर वापस चले गए कि नहीं पैगंबर की जियारत छोड़ दूंगा, माँ का हुक्म मानूंगा। और जब पैगंबर वापस आए
तो लोग जो इस दौरान थे ना, वो तो बहुत ज्यादा पैगंबर का वेट कर रहे थे कि पैगंबर को ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि या रसूल अल्लाह एक ऐसा बदतमीज आदमी भी आया था, या आया आपकी जियारत भी नहीं की, जियारत छोड़ के चला गया। और इससे पहले कि पैगंबर मस्जिद में एंटर हो, खड़े हो गए।

दरवाजे पर और एक मरतबा साउथ की जानिब रुख किया जहाँ यमन था और कहा इन्नी अशम राएहत और रहमान मिन जानिबिल यमन, यमन की तरफ से मुझे अल्लाह रहमान और रहीम की खुशबू आ रही है, मेरी एब्सेंस में क्या वाकया पेश आए। अरे जो ज्यारत छोड़ के चला गया, पैगंबर कह रहे हैं कि खुदाए रहमान और रहीम ये वैसे करानी हर एक को मालूम, वाकया बहुत मशहूर, बच्चों के लिए सुनाता रहता हूँ क्योंकि आजकल के ज़माने में न बाप का एहतराम है न माँ का ख्याल। देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी, एक बाप जो है वो अपने 10 औलादों को पाल लेता, जिनके यहाँ 10 औलादें भी होती हैं ना बाप पाल लेता है, लेकिन जब ये औलादें जवान होती हैं ये 10 औलादें मिलके एक बूढ़े बाप का ख्याल नहीं रख पाती। ये हमारे आपके आंखों के सामने हो रहा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल बात ये वैसे करा नहीं, माँ के कहने की वजह, माँ के हुक्म की वजह से पैगंबर की ज़ियारत छोड़ दी। अब जो कल जो मैंने वाकया बताया था उसका सोर्स क्या ढूंढ रहे हैं, ये तो हिस्ट्री का माना हुआ वाकया है, लेकिन इसका आखिरी जुमला याद है आपको इस वाकये का? जंग सिफिन के लिए जब मौला मदीन कूफे से निकल रहे थे, जब सीरिया की ज्यारतें हम करते थे, सारी ज्यारतें उसमें हलब भी जाते थे, रक्का भी जाते थे, वहाँ पे वैसे करनी का रौजा भी है। मौला कूफे से मुआविया से जंग करने के लिए लश्कर तैयार करके निकल रहे, लेकिन अभी फौज जाना जा रही है, मौला ने रोक दिया। 10 अलम थे मौला के लश्कर में, 9 अलम मौला ने मुख्तलिफ अपने अलमदारों को दे दिए, लश्कर के अंदर एक राइट पर एक, लेफ्ट के ऊपर एक, पीछे एक, बीच में एक, आगे कई जगह अलम होते हैं, तो 9 अलम मौला ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 10वां रोक लिया। लोगों ने कहा या अमीर अल मोमिनीन, उधर मुआविया आ चुका, वो सिफीन में पहले पहुंच गया था, फुरात का पानी बंद कर दिया था मौला के लश्कर पर, जब मौला का लश्कर लेट पहुंचा, वो एक अलग वाकया है। लेकिन बात ये क्या कर रहा हूं कि जिस वक्त मौला से कहा कि मौला अपनी फौज को आपने तैयार कर दिया, चलने वाले हैं चलिए, और ये 10वां आलम क्यों रोका? कहा कि अभी मैं इंतजार कर रहा हूं, एक मेरा सिपाही बाकी है उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, वो आएगा तो लश्कर चलेगा। सारी कायनात इमाम का इंतजार करे, इमामत किसी का इंतजार कर रही। और थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा एक बहुत ही बूढ़ा शख्स यमन की जानिब से चला आ रहा। ये वैसे कर रहे रसूलुल्लाह के ज़माने में जवान थे तो अब बूढ़े हो चुके, मौला ने ये अलम उनको दिया, वो इस जंग में गए, जंग सिफीन में मुआविया के लश्कर के हाथों शहीद हुए अम्मार यासिर की तरह से। लेकिन मैसेज क्या बना कि सारी दुनिया इमाम का इंतज़ार करती है, लेकिन कुछ ऐसे नेक लोग होते हैं जिनका ये इंतज़ार इमाम करते हैं। तो हमें और आपको उस कैटेगरी में जाना है कि जिसका इंतज़ार इमाम करेंगे, और इमाम उन्हीं का इंतज़ार करेंगे जो गैबत के ज़माने में अपनी वो सारी ड्यूटीज़ पूरी करें। लेकिन यहाँ पे एक आखिरी बात कह के असल मौजू पे आ जाऊँ, असल मौजू क्या है 21st सेंचुरी, वो आखिरी बात पैगंबर के सहाबियों में एक बहुत ही अहम सहाबी हैं मिक़दाद, मिक़दाद। अब हमारे पास असहाब रसूल का एक सीक्वेंस है फजीलत के अतबार से, सबसे अफजल सहाबी का नाम है सलमान फारसी, मिन्ना अहलुल बैत, और उसके बाद आते हैं अबू ज़र, उसके बाद आते हैं मिक़दाद। और बात को समझाने के लिए वो लफ्ज भी पैगंबर ने इस्तेमाल किए जो आजकल बहुत सी जगहों पे चलता है कि जी आपने हमारी सर्विसेज इस्तेमाल की, आप हमें कितने नंबर देंगे आउट ऑफ 10, वो बहुत ज़्यादा बहुत जगहों पे ये होता है ना। तो वहाँ पे 1400 साल पहले पैगंबर ने बता दिया कि ईमान के 10 दर्जे हैं, सलमान को 10 के 10 मिले, 10 out of 10, और ईमान के 10 दर्जे हैं, अबू ज़र को 9 मिले, 9 out of 10, और ईमान के 10 दर्जे हैं, मिक़दाद को 8 मिले हैं, 8 out of 10। तो ये तीसरे अजीम सहाबी हैं, मगर पांचवें इमाम की हदीस है कि एक चीज में ये मिक़दाद सलमान से भी ज्यादा अफजल है, सलमान से ज्यादा अफजल, जो सलमान अहलुल बैत में शामिल है का उनसे भी ज्यादा अफजल है एक चीज। अब जैसे स्कूल में होता है ना कि कई सब्जेक्ट होते हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने टॉप कर लिया क्योंकि अगर टोटल उसके नंबर जमा किए गए तो ज़्यादा, मगर फिजिक्स में एक स्टूडेंट उससे 2 नंबर ज़्यादा रखता, बट टोटल में वो जो है बाकी सब्जेक्ट में एक एक नंबर कम था तो टोटल में उसका दूसरा नंबर आता या तीसरा एक चीज़ में। और वह क्या चीज़ है? का मिक़दाद अहले बैत के ऊपर इतना यकीन रखते थे। अब सलमान की तौहीन हो रही है इस जुमले के अंदर कि क़यामत भी आ जाए, ज़मीन व आसमान भी एक हो जाएं,

कि ये ओल्ड मैन सिटिंग इन द नजफ और ओल्ड मैन सिटिंग इन द कुम, ये कितना पावरफुल है। इसका सिर्फ एक जुमला आगाए बुजुर्ग शिराजी के तंबाकू के फतवे को तो हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है, सिर्फ एक जुमला उनका जो तंबाकू के हराम होने का था, पूरी पॉलिसी ही बदलना पड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पूरा दुनिया का नक्शा ही चेंज हो गया था। इमाम खुमैनी का उस रात का एक हुक्म कि आज तेहरान में कोई आदमी अपने घर के अंदर नहीं रहे, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आलिम हो, जाहिल हो, आज सबको अपने घर से निकलना, सिर्फ एक जुमला उनका। इतना अजीम इनकलाब हमारे सामने आ गया, बड़ी बड़ी ताकतें जिसको ना रोक सकी। हजरत आयतुल्ला सिस्तानी का दाइश के खिलाफ सिर्फ एक फतवा इस तरह से नीस्त व नाबूद कर दिया इन जालिमों को, सिर्फ एक फतवा। जो हमारे अब वाकयात तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम नहीं है और जरूरत भी नहीं है इतने पढ़े लिखे मजमे को एक ही जैसी चीज रिपीट रिपीट सुनाने। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था एक मजलिस में कि खास तौर पर जो ये आखिर में आ गए सिस्तानी का एक फतवा आया था, दाइश को बनाया किसने था वो भी हर एक को पता है, और किस फतवे ने दाइश का खात्मा किया वो आपके सामने है। तो जिन्होंने दाइश को बनाया था उनको अब ये मर्जियत का निज़ाम ख़त्म करना। करें ये क्या हो रहा है कि हर 15-20 साल के बाद एक ऐसा फतवा आ जाता है, हमारी पूरी जितनी प्लानिंग है सब पे पानी फिर जाता है। हम तो प्लानिंग करते हैं, इतने सारे वो क्या थिंक टैंक होते हैं और बहुत सारे स्कॉलर जमा होते हैं और बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग होती है, ये बूढ़ा आदमी अकेला बैठा है, एक जुमला कहता है सब पे पानी फिर गया, आप इस इदारे इंस्टीट्यूशन को ही ख़त्म करना। आयतुल्ला सिस्तानी के बाद के लिए बहुत तैयारियाँ, बहुत तैयारियाँ। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ थोड़ा अलर्ट होके बैठे। अच्छा एक बात मैं और कह दूँ, ये आखिरी बात है जिसके बाद मुझे मसाइब पे आना पड़ेगा, ये 21st सेंचुरी की बात है। एक आखिरी बात कह दूँ, मोमिन कभी भी डिप्रेस नहीं होता, अपने आप को वीक नहीं समझता, मोमिन कभी मायूस नहीं होता। हालात कुछ भी हों यकीन रखिए इस कायनात का चलाने वाला एक अल्लाह है, एक रब्बुल आलमीन है, वो निज़ाम चला रहा है। मोमिन की पॉलिसी वही होती है, यानी मोमिन का तरीका वही होता है जो जंग खंदक में मौला का तरीका था। मालूम है ना आपको जंग खंदक में क्या हुआ था, अमर इब्ने अब्दुबुद आ गया था जो इक्वल था 1000 सवारों के, वो एक आदमी 1000 के बराबर माना जाता, और वो एक मरतबा जंप लगाकर, क्योंकि आप में से 90% चेहरे मुझे उम्रे और हज वाले नज़र आ रहे हैं, तो खंदक की भी आपने देखी है, जंग खंदक की जगह भी देखी है और मजलिसों में भी सुनते हैं, जंप लगा के आ गया ना। उस वक्त क्या हुआ था इस्लामी कैंप में, दो रिएक्शन थे, एक दुश्मनान अहले बैत का रिएक्शन था, सब घबरा गए थे कि या रसूल अल्लाह इतना ताकतवर आदमी हमारे दरमियान आ गया, हम तो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। एक साहब कहने लगे कि मैं इस्लाम से पहले एक बार इसके साथ ट्रैवलिंग कर रहा था, डाकुओं ने हमला किया, ये इतना बहादुर था, एक ऊंट के बच्चे को उठा के ढाल बनाया, सारे डाकुओं को भगा दिया। मैं पूछता भी था कि आपको ज़रूरत क्या पड़ी थी उनके साथ सफ़र करने की, लेकिन खैर वो छोड़ दिए। ये एक रिएक्शन था, ये एक रिएक्शन था, और ये मुसलमानों की मेजोरिटी का था, सब डरे जा रहे हैं, सहमे जा रहे हैं। बल्कि कुरान के अल्फाज को अगर लूँ तो ऐसा लग रहा था उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, सर हिला भी नहीं रहे कि कहीं ये चिड़िया उड़ ना जाए, एक मुहावरा। और मौला दूसरा क्या था कैंप, रसूल के कैंप में दूसरा रिएक्शन मौला का था, तीनों मरतबा मौला खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूँ बिठा दिए, मैं जा रहा हूँ बिठा दिए, मैं जा रहा हूँ बिठा दिए। दूसरों को भी चांस मिले वो कंप्लेन करते हैं, कोई नहीं आया, बल्कि वो रसूल के कैंप में है और फजाइल पढ़ रहे हैं अमर इब्ने अब्दुबुद के। भाई खुद तुम्हें नहीं जाना है, हमने मान लिया, खुद तुम्हें मैदान से भागना है भागते रहो, दूसरों को क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं। ये एक रिएक्शन, और एक मौला का था। जब चौथी मरतबा भी अली ही खड़े हुए, कोई और नहीं खड़ा हुआ, तो पैगंबर ने कहा आई अली तुम्हें पता है वो कौन है, वो अमर इब्ने अब्दुबुद है। मौला ने कहा तो क्या हुआ, अना अली इब्न अबी तालिब, अगर वो अमर इब्ने अब्दुबुद है मैं अबू तालिब का बेटा अली। ये मोमिन का तरीका होता है, 21st सेंचुरी हो के 31st सेंचुरी हो के 41st सेंचुरी हो, दुनिया भर की शैतानी ताकतें हमारे यूथ को बहका रही हो, हमारी औरतों को बहका रही हो, मोमिन जो है वो हमेशा उसका मोराल बहुत हाई होता है कि मैं मुकाबला करूंगा और शिकस्त दूंगा, इसलिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ अल्लाह।

के आई। ज़ैनब कुबरा तो पूरी जिंदगी इंतजार कर रही, बड़ी बेचैनी के साथ कहा, फरवा मैं तो सारी जिंदगी यह सोच रही थी कभी तो मुझसे कुछ मांगो। क्या मांग रही हो? कहा, शहजादी पहले वादा करें कि मेरा सवाल रद्द नहीं करेंगी, मेरी बात कबूल करेंगी। ज़ैनब ने कहा, कहो क्या कहना? कहा, मेरे कासिम को मख्तल में जाने की इजाजत दिलवा दी। ज़ैनब को हुसैन से जितनी मोहब्बत है ना, उससे कम मोहब्बत हसन से नहीं है। बस ज़ैनब ने उम्मे फरवा को देखा, कहा, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, मगर अली की बेटी वादा कर चुकी। फिजा भाई को बुला के ला। हुसैन आए, ज़ैनब क्या बात है? कहा कि भैया बस ये ख्वाहिश है, कासिम को मख्तल में जाने दे। हुसैन ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब बहन तुम्हें भी तो याद है ना भाई हसन मुश्तबा, मैं किस तरह उनकी निशानी को मख्तल में भेजूं। ज़ैनब ने कहा, भैया मगर क्या करूं, मैं उम्मे फरवा से वादा कर चुकी। अब दोनों ने, हुसैन और ज़ैनब ने मिलकर कासिम को तैयार किया। और उस वक्त उम्मे फरवा फिर जाती हैं सामान के खेमे में और वो अमामा लेके आती हैं और कहती हैं, आका ये मेरे आका हसन मुश्तबा का मामा है, ये पिना के कासिम को मख्तल में भेजे, हसन का लाल हसन का वारिस बन के जाएगा। और ये जुमले तो आपके सुने हुए कि कासिम इतना छोटा था कि घोड़े पे खुद से बैठ भी ना सका। अब्बास ने गोद में लेके कासिम को घोड़े पे बिठाया और कासिम का जिहाद। बहुत छोटा है कासिम लेकिन मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार का पोता है, हसन मुश्तबा का भतीजा है, हुसैन हसन मुश्तबा का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, वो जिहाद किया। एक शामी पहलवान अजरक के साथ बेटे यके बाद दीगरे मारे, खुद वो सामने आया, उसका भी खातिमा हुआ तो घबरा के कहता है, मेरी मदद करो। एक मर्तबा उमर साथ की फौज आई, कासिम ने चचा को आवाज़ दी। देखिए करबला में कितने शहीदों ने हुसैन को पुकारा, मगर ये मख्तल का जुमला है, किसी की आवाज़ सुनकर इतनी तेज़ी से आका हुसैन नहीं दौड़े थे जैसे हसन के लाल कासिम की आवाज़ सुन के दौड़े, इतनी तेज़ी से आए। लश्कर यजीद तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इतने जल्दी से आ गए। अब जो हुसैन को आता देखा, लश्कर यजीद में भगदड़ मची, इधर के घोड़े उधर दौड़े, उधर के घोड़े इधर दौड़े। नहीं, खाली घोड़े नहीं दौड़ रहे, घोड़ों के दरमियान जमीन करबला पे कोई महलका पड़ा हुआ है। मेरे एक उस्ताद इमाम जमाना का एक जुमला कोट करते हैं कि इमाम ने सलाम किया, मेरा सलाम करबला के उस शहीद को जिसकी दाई पसलियां टूट के बाई तरफ चली गई थी, बाई पसलियां टूट के दाई तरफ आ गई। घोड़े बीच में कासिम का लाशा। एक मर्तबा एक और मेरे उस्ताद है अल्लामा तालिब जौहरी के वालिद, उनका एक जुमला सुनी, का करबला में जितने मसाइब, तमाम शहीदों ने हुसैन का साथ दिया, मगर एक मुसीबत ऐसी है सिवाय कासिम के, किसी ने हुसैन का उसमें साथ नहीं दिया, और वो है जिस्म का पामाल होना। या हुसैन का जिस्म पामाल हुआ या कासिम का, मगर यहाँ भी एक फर्क है, जब हुसैन पर घोड़े दौड़े तो हुसैन शहीद हो चुके थे, कासिम जिंदा था। और एक मरतबा हुसैन कासिम के सराहाने पहुंचे, वो जुमला का, कासिम बेटा तेरे चचा के लिए इंतहाई शाख है कि तूने पुकारा और मैं देर से आया। कासिम ने आंखें खोली, आंखें खोली, आंखें खोल के चचा को देखा, जीव जुमला का, बाबा आप आ गए, बाबा आप आ गए। क्या कासिम को ये नहीं पता ये हुसैन है, चचा है, बाप नहीं है? कासिम ने आंखें खोल कर ये क्यों कहा कि बाबा आप आ गए? अरे मेरा दिल कहता है, इधर कासिम घोड़े से गिरे, हुसैन खेमे से चले, हसन मुश्तबा जन्नतुल बकी से चले होंगे, आ मेरे लाल कासिम, तेरा बाप तुझे लेने आ रहा है, दोनों भाई साथ पहुंचे होंगे। हुसैन ने अबा जमीन पे बिछाई, कासिम का लाशा उसमें जमा किया और लेके दरे खेमा तक गए। बस मेरा आखिरी जुमला, अब वहां बीबियां इंतजार कर रही हैं, हुसैन हर लाशा लेके आते, यहाँ पे हुसैन खेमे के दरवाजे पे आके रुक गए, बीबियाँ इंतजार कर रही हैं, आका अंदर आए, आका अंदर नहीं आ रहे। आखिर ज़ैनब बाहर आ गई, कहा भैया तुम अंदर क्यों नहीं आए, तो और कासिम का लाशा कहाँ है? हुसैन ने अबा की तरफ इशारा किया, कहा इस गठरी में कासिम का लाशा है और मैं इसलिए अंदर नहीं आ रहा कहीं कासिम की माँ अपने लाल का ऐसा लाशा ना देखे, मर जाएगी। उम्मे फरवा भी ज़ैनब के साथ बाहर आ रही थी, जुमला सुना, कहा आका ये आपने क्या कह दिया, ज़रा दिखाइए तो सही मेरा लाल किस हालत में है।

अब हुसैन ने अबा जमीन पे रखी, अबा को खोला, माँ ने अपने लाल का ऐसा लाशा देखा, बेइख्तियार एक जुमला कहा, शहजादी जैनब, शहजादी कुलसूम, ऐ कुबरा, ऐ रबाब, ऐ लैला, आके मुझे मुबारकबाद दो, मेरा तोहफा सबसे ज्यादा कबूल हुआ है, हाय मेरा कासिम टुकड़े टुकड़े हो गया, वाह कासिमा।

भाई जुमले सुनना, लेकिन मुझे जाना आगे। भाई ये वाकया मक्के का है, रसूल ने हिजरत की, मक्के से सफर इख्तियार किया, मक्के का जमाना गुजर गया, रसूल ने हिजरत की, मदीने आए। हिजरत का पहला साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, हिजरत का चौथा साल आया, नबी अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमाए और शमे रिसालत के परवाने नबी को घेरे हुए बैठे कि इतने में मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए और कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो। और वही अली ने चीख के कहा कि या रसूल अल्लाह आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज आप मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह मेरी परेशानी को दूर करे। आज अली के लिए रसूल दुआ करेंगे। और एक मरतबा रसूल ने हाथ को बुलंद किया, भाई तवज्जो रखना इस जुमले के लिए सहमति, अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्ने अबी तालिब बेहक अली इब्ने अबी तालिब। परवरदिगार अली की परेशानियों को दूर कर, अली इब्ने अबी तालिब की परेशानियों को दूर कर, बेहक अली इब्ने अबी तालिब, तुझे वास्ता अली इब्ने अबी तालिब का। बस ये सुनना था कि दिल की बात जबान पे आ गई, किसी ने पुकार के कहा कि या रसूल अल्लाह ये आखिर बात क्या है कि हमारा काम हो जब भी बेहक अली इब्ने अबी तालिब और अली का काम हो जब भी वसीला अली का। तो एक मर्तबा रहमत ने जलाल के आलम में कहा कि अरे तुम अपनी बात करते हो, जब मुझे अपनी दुआ कबूल करवानी होती है जब भी मैं अली

से लेके शाम तक थीं, और वो औरतें जो शाम से लेके अब तक हुसैन इब्ने अली के क़याम और मकसद को दुनिया तक पहुंचा रही हैं, ये चार किस्म की औरतें हैं जिनके सिलसिले में कल इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तौफीक दिया तो कल उस पर गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। आज ख़वातीन के हवाले से के जैसे मर्द अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो अभी तक हमने गुफ्तगू की वो सब के लिए, मर्द और औरत दोनों के लिए है, लेकिन आज मखसूस हम औरतों से के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले इन तमाम बच्चों के लिए और इनकी सलामती के लिए, इन लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़ादारी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएबल है कि इतने डिसिप्लिन से इतनी खिदमत करते हैं, इनके वालिदैन की और इनकी सलामती के लिए आप लोग सब एक बार मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दें। अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा ने इंसान को पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, या खुदा ने कहा कि ज़कर व उनसा, मर्द और औरत दोनों को मैंने खल्क किया, तो जब हम इंसान को बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं तो हम ये कहते हैं इंसान में कुछ मर्द हैं कुछ औरतें हैं। दोनों के लिए अल्लाह ने गोल एक रखा, गोल क्या है? तकवा है। मन ज़क्काहा, जिसने प्यूरिफाई किया, अतकाकुम, जो सबसे ज्यादा प्यूरिफाइड है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, गोल दोनों के लिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने एक रखा है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए रास्ते मुख्तलिफ हैं। अब हम यहां बैठे हैं, जो जेंट्स सेक्शन में बैठे हैं हम जेंट्स हैं, लेडीज सेक्शन में बैठे हैं वो लेडीज हैं। पहला क्वेश्चन के क्या मैंने डिसाइड किया कि मुझे मर्द होना है या औरत होना है? मेरे इख्तियार में था, मेरी चॉइस थी, मैंने चूज किया? नहीं। इंसान या तो खिलकत है या क्रिएशन है या इंडिपेंडेंट है, दो में से एक चीज है। हम ये मानते हैं कि इंसान खिलकत है, इंसान क्रिएशन है। अब जब क्रिएशन है तो इसका एक क्रिएटर भी है, और जो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में रिलेशन है उसी को रिलीजन कहते हैं। मैं आपके सामने जो हमारी ख़वातीन बहनें हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो गौर से सुने, और इंशाल्लाह जो Q&A सेशन होगा उसके अंदर अगर आपके जहनों में सवाल है तो वन वे नहीं रहना चाहिए, आप आए गुफ्तगू करें और हत्ता काउंटर करें। अगर आप हमारे नज़रिए से हमारी बातों से अग्री नहीं करती हैं तो आप आके बोलें, हम इंटरेस्टेड हैं आपकी तरफ से बात सुनने के लिए। मैं यूनाइटेड नेशन का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि दुनिया में 4.138 बिलियन मर्द हैं और 4.094 बिलियन औरतें हैं, यानी तकरीबन आधे परसेंट से भी कम, यानी 0.027% या 23% जो है, 23 मतलब आधे में से भी कम, 0.023% सिर्फ फर्क है मर्द और औरत के बीच में, यानी तकरीबन मर्द और औरत दुनिया में सेम है। सवाल कि पूरी दुनिया में इतने मर्द होंगे इतनी औरतें होंगी, इसके लिए कौन सा मैनेजमेंट काम करता है? यूनाइटेड नेशन की कोई बॉडी है जो डिसाइड करती है कि भाई मर्द ज्यादा हो रहे हैं, अब मर्द को कम करना चाहिए, अब औरत को ज्यादा करना चाहिए, अब औरत ज्यादा हो रही है मर्द कम करना चाहिए? ये कैसे होता है कि पूरी दुनिया में 50% मर्द होते हैं 50% औरतें होती हैं? ये तो मानना पड़ेगा ना कि कोई है जो निजामे हस्ती को चला रहा है,

रैंडम तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, जो डॉक्टर्स हैं या मेडिसिन फील्ड के मेरे साथ बैठे हैं, तो आप अगर डॉक्टर्स से पूछेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कि कितने मर्द और कितनी औरतें होंगी, यानी कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस, तो वो कहेंगे वन मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स में से वो मिलियंस में से वो एक एग पे जाके अगर एक्स के साथ एक्स बैठेगा तो लड़की होगी, एक्स के साथ वाई बैठेगा तो लड़का होगा। ये क्या डिसाइडेड होता है? कहा नहीं, ये डिसाइडेड नहीं होता है। यानी कई करोड़ सेल्स में से एक एक्स या वाई जाके बैठेगा तो उसके बाद लड़की होगी या लड़का होगा। इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के अंदर भी दुनिया के अंदर 50% मर्द हैं, 50% औरतें हैं। यानी अल्लाह ने तुम्हें या मर्द खल्क किया है या औरत खल्क किया है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लान विच इज अ डिवाइन प्लान, सो यू नॉट इंडिपेंडेंट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं अजीजाने गिरामी, मर्द सुपीरियर है, औरत सुपीरियर है, और वेस्ट ने पिछले 150 और 200 ईयर्स के अंदर एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया है, और उस इंशाल्लाह उसको हम लोग आज थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करेंगे। कहा कि मुसलमान जो है बहुत बैकवर्ड होते हैं, अपनी औरतों को हिजाब पहनाते हैं, खुद बहुत मॉडर्न है। अभी उनकी मॉडर्निटी आज इंशाल्लाह खोलेंगे हम लोग, कितने मॉडर्न है वो लोग। तो आप देखिए, सबसे पहले के ब्रिटेन में जो इनके किंग थे, उस किंग ने 7 शादियां किया था, और किसी भी बीवी से उसको लड़का नहीं हो रहा था। तो उसने अपनी बीवी का कत्ल करवाया, उसको सजाए कत्ल दिलाया, इसलिए क्योंकि वो बच्चा लड़का नहीं दे पा रही थी। अब इसको कंपेयर करें इस्लाम से, कि जहां पर रसूल अल्लाह से पहले औरतों को, बच्चियों को दफना दिया जाता था, और रसूल अल्लाह ने औरतों के मकाम को इतना बुलंद कर दिया कि रसूल बैठते थे, फातिमा जहरा घर में दाखिल होती थी, रसूल अल्लाह जाते थे, फातिमा का इस्तकबाल करते थे, माथा चूमते थे, वहां बिठाते थे जहां रसूल बैठते थे, फिर दूसरी जगह जाके बैठते थे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले। जल्दी जल्दी बयान करूंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। अब गौर करिए कि ये वेस्ट की सोसाइटी थी कुछ 100 साल पहले, जो हमको भी सिखाने आ रहे हैं। आप गौर करिए कि 1870 तक यूके में औरतों को राइट टू वेल्थ और राइट टू पोजेशन नहीं था। यानी अगर औरत काम करती थी तो पैसा या शौहर के अकाउंट में जाता था या उसके बाप के अकाउंट में जाता था। प्रॉपर्टी भी जो मिलती थी वो प्रॉपर्टी खुद नहीं रख सकती थी, या तो उसके शौहर के नाम पे होगी या उसके बाप के नाम पर होगी। तुम्हारी सोसाइटी 150 साल पहले तक औरत को ये इस लायक नहीं समझती थी कि वो कोई चीज अपने ओनरशिप कर सके। ये हमारे लिए मॉडल था। अब आते हैं 1870 से आपको 14 सेंचुरीज पहले लेके चले जाते हैं, 13 सेंचुरी पहले लेके जाते हैं। यहां पर कुरान मजीद खुल के कहता है, लिर्रिजाल नसीबु मिम्मक्तसबु लिन्निसाए नसीबु मिम्मक्तसबना, जो मर्द कमाएगा वो मर्द का हिस्सा है, जो औरत कमाएगी वो औरत का हिस्सा है। राइट टू ओनरशिप, राइट टू वेल्थ, राइट टू इर्स, ये सब कुरान ने 14, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट से हम 1300 साल आगे हैं, कम से कम ये कह सकते। औरतों को जो फंडामेंटल राइट्स दिया वो इस्लाम ने दिया। इस्लाम से पहले हमें बताएं किसने राइट्स दिया था।

That is the fundamental point. Who is my role model? So ideologically, I'm sorry, but ideologically, West or Western media ne mere zehen ko influence kar diya hai. Main zaban se keh nahi raha hun, but I feel somehow that the way of life of the West is superior to what Hazrat Fatima Zahra is presenting me. That is the reason I'm not choosing the path of Hazrat Fatima Zahra. So there is two model of life. One is what Allah, Quran and Ahle Bayt gave us, and one is what West has given us. And West ka claim kya hai ki humne ek aisa model diya hai jo model insaan ko khushhal karta hai, insaan ki kamyabi usi ke andar hai, insaan ki fala usi mein hai, insaan ki success usme hai. Ye unka claim hai. So, aaye inke claim ko hum judge karte hain ki kya inka claim hai aur kya inke claim ke baad inki reality hai. Gaur kariye. Hum kehte hain hijab pehno. Ye kehte hain hum kyu hijab pehne? Mardon ko bolo nigah neechi karne ko. Hijab to dil mein hota hai. Hijab to dil mein hota hai. Aankhon ki haya hoti hai. Tumko ye sab pata hai, Fatima Zahra ko nahi pata tha. Allah ko nahi pata tha jo Allah ne Quran mein hukm diya. Ab gaur kariye azizane girami ke ye agar hum model lete hain to inka claim kya tha ki West, the Western society has progressed so much, you know, in the West anybody wants to wear anything, whatever they like, it's everybody is free, there's no problem in the West. Okay, so main aapke samne United Kingdom ka सेक्सुअल हैरेसमेंट रिपोर्ट 2021 मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं. इसमें आप गेस करें बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 24 या 18 एंड 24 कितनी परसेंट यूके की खवातीन ने, फीमेल्स ने कहा होगा कि मेरे साथ जिंदगी में कम से कम एक बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है. मर्दों को तो कुछ नहीं करना चाहिए था ना, तुम आजाद हो तो मर्द लोग तो सारे अपनी निगाहें नीची कर लिए होंगे वेस्ट में, ऐसे ही होगा ना. आपका क्लेम तो यही था. 97% यूके में फीमेल्स एजेड बिटवीन 18 एंड 24 से दैट वी हैव बीन सेक्सुअली हैरेस्ट एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ टाइम. सो यू वर क्लेमिंग दैट यू हैव क्रिएटेड द आइडियल वर्ल्ड. यूनाइटेड नेशन की वुमेन्स की हेड जो है, उस काली बेनेट उसका नाम है, वो कहती है द सिचुएशन ऑफ वुमेन्स इन द वेस्ट हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ क्राइसिस. तो आप तो बोल रहे थे बहुत अच्छा है वहां पर, ये अच्छा है. दिस इज, मैं उनके ही डेटा बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं. वर्स्ट इसका यह है कि 90% से ज्यादा जब सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस होते हैं तो दे डोंट गो टू रिपोर्ट बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा. सो आपका यह क्लेम कि औरत जो चाहे पहने, मर्द निगाहें नीची कर लेंगे, प्रैक्टिकल 100 साल में आपने देख लिया फेल हो गया. मैं एक और सर्वे आपके सामने पेश करता हूं, हमारी बहनें गौर से सुने. एक सर्वे किया गया जहां पर लड़कियों को कहा गया कि कैन गर्ल्स एंड बॉयज बी फ्रेंड्स, कैन गर्ल्स एंड बॉयज बी फ्रेंड्स. सबने कहा यस यस, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू नो, जस्ट फ्रेंडशिप, वी आर जस्ट फ्रेंड्स. I don't have any feelings, we are just friends, you know, we just talk. तो सर्वे किया गया, लड़कियों को कहा गया कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने कहा इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फला फला. उनको पूछा गया कि ये जो सारे आपके फ्रेंड्स हैं ना, आप ट्रस्ट करते हो इनको, कोई भी इनमें से आप पे बुरी निगाह नहीं रखता है? अरे अरे यस यस, दे आर माई फ्रेंड्स, यस यस यस, उन लोग, वी जस्ट फ्रेंड्स, यू नो.
लड़कों से पूछा है कि आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं जो फीमेल्स हैं, लड़कों ने कहा कि इतनी। फिर ये लड़कियों से

पूछा गया कि अगर ये फ्रेंड्स जो हैं, I'm using such words on the member, लेकिन it is important कि हमारी बहनें, हमारे जवान समझें इस बात को. लड़कियों को पूछा गया कि ये जो आपके सब फ्रेंड्स हैं, आप ट्रस्ट करते हो? बोले हाँ. बोले आप ट्रस्ट करते हो कि अगर आप ऑफर करोगे खुद उनको तो वो बोलेंगे नो? तो कहा यस, दे जस्ट फ्रेंड्स. सब लड़कियों ने कहा यस. उन्होंने कहा कॉल करो. जितनी लड़कियों ने, जितने लड़कों को कॉल करके कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आर यू अवेलेबल फॉर मी, सारे लड़कों ने कहा यस आई एम अवेलेबल. लड़कियां दोस्ती करती हैं इमोशनल अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, लड़के दोस्ती करते हैं वेट करने के लिए कि कब मौका मिलेगा गुनाह करने का. No, girls and boys cannot be friends. No, they cannot be friends. Yes, college में साथ में पढ़ सकते हैं, जितनी जरूरत की बातें हैं उतनी कर सकते हैं. But if you be friends, you should know the male psychology. So this is, अगर लड़कियों को ये कन्विंस किया गया है कि आप जो भी पहनेंगे मर्द बुरी निगाह से नहीं देखेंगे, मर्द एंजॉय नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है. मर्द बुरी निगाह से भी देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे, एंड दे विल यूज योर बॉडी एज अ मींस ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्लेजर थ्रू देयर आईज और थ्रू अदर वेज. इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बिकम दैट मीडियम और यू डू नॉट वांट टू बिकम दैट मीडियम. सो दिस इज द वेस्टर्न मॉडल. सो एंड दिस इज व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग यू. वक्त कम है, इसके लिए जल्दी जल्दी बयान करो. ये स्टैटिस्टिक्स उनके स्टैटिस्टिक्स हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स नहीं है. अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रेजेंटर है, वो कहता है कि आई हैव नो फ्रेंड्स हु आर गर्ल्स एंड माय वाइफ इज नॉट अलाउड टू हैव एनी फ्रेंड्स हु आर बॉयज, बिकॉज मैन व्हेन दे मेक फ्रेंड्स दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. दैट इज द फ्रेंडशिप ऑफ गर्ल, फ्रेंडशिप बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. आगे बढ़ते हैं. तो इनका मॉडल जो था वो ये था कि लड़कियां जो भी पहनेंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने देखा ये प्रॉब्लम है. आगे बढ़ते हैं. इनका दूसरा क्लेम ये था कि भाई साहब हम लोग जो हैं एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जहां औरतें खुश होंगी. द वुमेन्स विल बी हैप्पी. बट नाउ व्हेन वी गो एंड लुक व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस and what is happening in UK and the western countries, the ratio of depression and ratio of problem of mental health between men and women, it is at least 3 times worse. Woman jo hai 3 times zyada depression mein hai. Kyun? Aapne to model bahut acha banaya tha, auraton ko to khush hona chahiye tha. क्यों डिप्रेशन में है? वाई? बिकॉज अजीजाने गिरामी, एक औरत को इंसान से निकाल कर एक जिस्म बना दिया गया है, जिस औरत के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया है कि तुम्हें हर वक्त खूबसूरत दिखना है. यू हैव टू लुक ब्यूटिफुल एट ऑल टाइम्स. किसके लिए? हर एक के लिए. व्हेन यू वॉकिंग ऑन द रोड, आपको ये आप व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, द क्राइटेरिया ऑफ योर सक्सेस इज हाउ मेनी मेन लुक एट यू. सो व्हेन यू आर सिटिंग इन द ट्रेन और व्हेन यू आर सिटिंग इन द बस और वॉकिंग ऑन द रोड, द बिकॉज आपके आपके जहन में ये नहीं है कि मैं एक इंसान हूं, मेरी नफ्स है, मेरी रूह है, मेरी रूह हकीकत में मेरी कामयाबी का मेयार है. आपको सोसाइटी ने, मूवी ने, मीडिया ने प्रेशराइज किया है कि आई हैव टू लुक ब्यूटिफुल. इफ आई डोंट लुक ब्यूटिफुल आई एम इन प्रॉब्लम. शी हैज टू लुक ब्यूटिफुल ऑल द टाइम वेर एवर शी गोज. दिस इज अ प्रेशर ऑन अ वुमन. आप जॉब पे जाते हैं, आप कपड़े पहने, जल्दी जल्दी तैयार हुए, निकल गए, उसको 45 मिनट्स पहले आईने के सामने खड़ा रहना है. व्हाई इज दिस प्रेशर ऑन दैट वुमन? बिकॉज व्हेन शी गोज टू द ऑफिस

office, somebody should say, wow, you're looking so beautiful today. She's in pressure. You need to accept it. My sisters need to accept. This is what Islam aapko in bandhanon se, in zanjeeron se azad kar deta hai. Kehte hain tum college jao, university jao. Ye important nahi hai tum kaisi lag rahi ho. Ye important hai ki tumhara kirdaar kya hai. So who is under pressure? We or them? So the claim ki hum log jab west mein rehte hain, या हम लोगों का जो ये क्लेम है कि हैप्पीनेस लेके आता है, तो अगर आप डिप्रेशन का रेट देखेंगे बिटवीन 16 एंड 24, तो 1 in 3 वुमन इन यूके, 31% वहां पर जो लोग हैं वो क्या हैं, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स बता रही है कि वो डिप्रेशन के शिकार है. सो वो एक औरत को एक्सपेक्ट किया गया है कि तुम्हें बच्चे भी पैदा करना है, तुम्हें बच्चे भी पालना है, घर पे भी रहना है, खूबसूरत भी दिखना है, तुम्हें एजुकेशन भी हासिल करना है, तुम्हें सोशली भी सक्सेसफुल होना है, तुम्हें हमेशा ब्यूटीफुल भी दिखना है, हस्बैंड को भी केयर करना है. कितना करेगी एक औरत? डिप्रेशन. इन बंधनों से आजादी का नाम इस्लाम है, इन जंजीरों को तोड़ने का नाम इस्लाम है. औरत चादर पहनती है तो वो जो चादर होती है वो उसको गुलाम नहीं बनाती, आजाद बनाती है. अल्लाह का गुलाम बनाती है, दुनिया से आजाद कर देती है. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद. अज़ीज़ाने गिरामी, आप गौर करें, ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स में या स्पोर्ट्स होता है, फुटबॉल अभी हो रहा है, फीफा हो रहा है, सारे फुटबॉल प्लेयर जो शॉर्ट्स पहनते हैं वो नी तक होता है या नी के नीचे होता है. लेकिन जितने औरतों के गेम्स ओलंपिक्स में होते हैं उनको कैसे लिबास पहनाए जाते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? कभी किसी औरत ने ऑब्जेक्ट किया, क्यों हम लोगों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है? मर्द ऐसा लिबास पहन रहा, औरत ऐसा लिबास पहन रही है. लंदन में ठंडी लग रही है, आप जाएं वहां पर मेट्रो में बैठे, मर्द ने कोट पहना है, ओवर कोट पहना है, अंदर मफलर डाला है, कान पे ये डाला है, हाथ में ग्लव्स है, औरत इतना कपड़ा पहन के उस ठंडी में बैठी है, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे. क्यों? क्योंकि वो औरत को गुलाम बनाया गया है मर्दों का. इस्लाम ने इस गुलामी से तुम्हें आजाद किया था. तुम आराम से बहनों बैठो मेट्रो में, कोई बैठा है बैठे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. इस गुलामी से आजादी का नाम इस्लाम है. अजीजाने गिरामी, आप देखें, अब ये मर्दों की भी प्रॉब्लम है हमारी, मीडिया के असर में एक्सपेक्टेशन ऑफ वाइफ और एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्यूटी चेंज हो गई. व्हाट वाज ब्यूटीफुल 30 years ago इज नॉट ब्यूटीफुल एनीमोर. What was beautiful 5 years ago is not beautiful anymore. The expectation जो हो गई है, आप चाहे advertise ही देखें, आप Hollywood, Bollywood जो भी movie देख रहे हैं उसके एक scene के लिए 3 घंटे का makeup है, फिर full के 4K camera है, फिर lighting है, फिर उसके बाद editing है, फिर वो है, फिर वो है. आपको सीन कितने देर का देखना है? 15 सेकेंड्स का. उसका असर आपकी जिंदगी पे होता है कि आपके जहन में ब्यूटीफुल इज दिस एंड माय वाइफ इज नॉट ब्यूटीफुल. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी चेंजेस. इसी प्रेशर में कि औरत को अल्लाह ने कहा है तुम्हें खूबसूरत अपने शौहर के लिए दिखना है, तुम्हें तमाम आराइश अपने शौहर के लिए करना है. लेकिन हमारे यहां तमाम आराइश पार्टी के लिए होती है. शौहर जल्दी जल्दी आता है, चलो घर पे जाऊंगा, मेरी बीवी आज मेकअप करी है, थोड़ी खूबसूरत दिख रही है, उसको देखूंगा. घर पे पहुंचता है तो पता चला है कि सब कुछ चेंज हो गया. दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने शौहर के लिए तैयार नहीं हो रहे. इस्लाम इसका ऑपोजिट है. अज़ीज़ाने गिरामी, आप गौर करिए, ह्यूमन प्रायोरिटीज, फीमेल्स, मेरी बहनें गौर से सुने, ह्यूमन प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं. मेकअप इंडस्ट्री क्रिएट की गई, मेकअप इंडस्ट्री, आप जानते हैं

मेकअप इंडस्ट्री दुनिया में कितने कितनी कितने उसकी है, वर्थ क्या है? द मेकअप इंडस्ट्री इन 2019 उसका वर्थ था $380 बिलियन। ईरान को भी सिर्फ $300 बिलियन मिल रहा है। सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री का वर्थ $380 बिलियन है और वो एक्सपेक्टेड है $436 बिलियन हो जाएगा, बिकॉज औरत के ऊपर एक प्रेशर है कि शी हैज टू लुक ब्यूटिफुल ऑल द टाइम। शिलिंग्स में आप देख सकते हैं कितना होता है, $380 बिलियन। सो अभी मेरी बात सुने कि सिर्फ $80 बिलियन से पूरी दुनिया में भूखमरी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इंसान को इस तरीके से प्रेशराइज किया है कि औरत सोचती है लैक्मी, लोरियल, आई नीड टू लुक ब्यूटिफुल। सो द प्रायोरिटी चेंज हो गई, एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, औरत को प्रेशर क्रिएट किया गया, मर्दों के जहनों को मुतासिर किया गया। वो सोसाइटी जहां औरत और मर्द एक दूसरे को तकवा और उनके ईमान की वजह से पसंद करते थे, जाहिर भी इंपॉर्टेंट था लेकिन असल ईमान इंपॉर्टेंट था, इस सोसाइटी में कॉन्स्टेंट एक औरत को अंडर प्रेशर रखा जाता है और ये औरत मीडिया के असर में खुद भी उस प्रेशर को हंस हंस के कबूल करती है मॉडर्निज्म के नाम पर। आप आगे बढ़ें, अजीजाने गिरामी, मैं पावर पॉइंट अगर हो तो उसको लगा दें ताकि हमारी बच्चियों को कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। ये शुरू कहां से होता है अजीजाने गिरामी? शुरू होता है बाबी डॉल, पता है आपको? जानते हैं बाबी डॉल? बाबी डॉल जो है वो बचपन में हम बच्चों के हाथ में दे देते हैं। यूके में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे ने इस बात को साबित किया कि जो बच्चियां बाबी डॉल लेती थीं बचपन में, उनके जहन में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाता है, रोल मॉडल बन जाता है। खूबसूरत कौन? वो लड़की जो गोरी होगी, वो लड़की जिसके बाल गोल्डन होंगे, वो लड़की जिसकी आंख ब्लू होगी और वो लड़की जिसका जिस्म ऐसा होगा जो ऐसे लिबास पहनेगी। और हर लड़की जब उसे देखती है तो वो ये सोचती है मैं बार्बी की तरह नहीं हूं। जो बाबी का बीएमआई है बॉडी का, वो कहते हैं 1,00,000 लड़कियों में शायद एक होता है, लेकिन वो रोल मॉडल बचपन से सेट किया जाता है। आपके जहन में कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी बचपन से डाला जाता है। अजीजाने गिरामी, कल मैंने बात की थी, रहबरे मुअज्जम शहीद कहती हैं कि आप अपने बच्चों के लिए ऐसे एनिमेशंस बनाएं, कार्टून्स बनाएं कि पूरा पैकेज हो, जिसके अंदर बच्चों के खिलौने भी इस्लामिक हों, घर में पर्दे भी इस्लामिक हों, जो पूरा उसको रोल मॉडल बनाना है। बच्चा रात को सोए तो ये नहीं सोचे कि रोनाल्डो के लगाना है, उसके जहन में होना चाहिए हजरत अब्बास का मुझे पूरा सजाना है घर। लेकिन हमने नहीं बनाया, इन लोगों ने बनाया। बचपन से ये अपने रोल मॉडल्स आपके बच्चों को सेल कर रहे हैं। हम अपने रोल मॉडल्स ना बना सके ना बच्चों को सेल कर सके। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी यहां से तब्दील हो गई। अजीजाने गिरामी, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, वो क्या है कि ये पूरा इनका जो एक क्रिएशन था कि औरत ऐसी होनी चाहिए, औरत ऐसी होनी चाहिए, वो वहां से वहां पहुंच गए। अब औरतों से सवाल कर रहे हैं कि औरत क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ वुमन ही नहीं पता इनको, अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है। पहले आपको आजाद करने के लिए सारी बातें लेके आए थे। एक लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बहनों को लगता है कि भाई आई मेक डिसीजंस, यू नो आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई एम वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, आई एम वेरी रैशनल, आई एम वेरी लॉजिकल।

मैं आपके सामने ये सवाल करता हूं कि आप जो भी फैसले करते हैं जिंदगी में, क्या पहनना है, क्या खाना है, किधर रहना है, कैसी जिंदगी जीना है, किससे शादी करना है, शादी के बाद जिंदगी कैसी होनी चाहिए, करियर कैसा होना चाहिए, आप डिसाइड करते हैं या आपका ब्रेन कंडीशन किया जाता है कि आप ऐसा सोचें? सोचें इसके बारे में, हु एम आई? मैं आज जो जिंदगी के बारे में सोचता हूं, मैं इंडिपेंडेंटली सोच रहा हूं या कुल्लन वो सोसाइटी ऐसी बनी हुई है जिसके बीच में रहने की वजह से मैं फोर्स्ड हूं ऐसा सोचने के लिए? एक लड़की है, सब बेहिजाब आ रहे हैं, सब बदहिजाब आ रहे हैं और उन्हीं को मॉडर्न समझा जाता है। लड़की प्रेशर में है। आप और वही ईमान की बात है, जब ईमान मजबूत होता तो कोई प्रेशर काम नहीं आता। वो ज़ैनबे कुबरा की तरह दुश्मन के मैदान में भी खड़े रहे के हक बोलने की ताकत पैदा करते, वो ईमान की बात है। आप एक लास्ट मिसाल दे रहा हूं ताकि हमारी बहनों के लिए क्लियर हो जाए। अमेरिका में सिगरेट बेचने की बात हुई तो जो सिगरेट की कंपनी है वो लॉस कर रही थी, तो सिगरेट की कंपनी के जो मालिक थे उन मालिकों ने यह कहा कि भाई सिगरेट जो है वो बिक तो रही नहीं है, तो क्या करें? तो जो मार्केटिंग कंपनी, मार्केटिंग के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम 50% ऑडियंस को तो सिगरेट बेच ही नहीं रहे। कहा कौन? कहा औरतें। का एक ऐसा पीआर कैंपेन बनाते हैं कि औरतों को हम बेच सकें सिगरेट। तो आप गौर करें कि वहां पर 1920s और 30s में पहली बार फेमिनिज्म, औरत की आजादी और उसी के साथ मिक्स किया गया सिगरेट। ये कंपनीज उसी जमाने में औरतों की आजादी के जुलूस निकलते थे, तो इन्हीं जुलूसों के अंदर इन लोग पेड वो रखते थे, पेड मॉडल्स रखते थे, जो पेड मॉडल सिगरेट लेके वो जो प्रोटेस्ट होते हैं, उस सिगरेट लेके ऐसे उंगलियों में सिगरेट पकड़ के चलते थे। यानी इंसानों ने खुद मिलके डिसाइड नहीं किया कि हमें सिगरेट पीना है, औरतों ने खुद डिसाइड नहीं किया, पीआर कंपनी ने डिसाइड किया कि औरतों को सिगरेट बेचने के लिए फ्रीडम का स्लोगन इस्तेमाल करना है। स्लोगन फ्रीडम का होगा, बेचेंगे सिगरेट। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि आज दुनिया में बड़ी तादाद औरतों की सिगरेट पीती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सिगरेट पिएंगे तो वी विल बी मॉडर्न, यू नो। और जो तुम्हें लग रहा है कि तुम मॉडर्न हो, वो कुछ कंपनीज अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए तुम्हें टूल बना रही हैं। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं सिगरेट की, आप 100 मिसाल ला सकते हैं ऐसी, जो तुम्हें आजादी के नाम पे बेचा जा रहा है वो तुम्हारी आजादी को एक्चुअली सल्ब किया जा रहा है, तुम्हारी आजादी को छीना जा रहा है। एक चीज औरतों को कहा गया कि मर्द कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, मर्द खाई में गिरेगा तो तुम भी खाई में गिरोगी। इस्लाम ने कहा है आप ये देखो कि अमल कमाल है कि नहीं, अगर कमाल है तो फर्क नहीं पड़ता मर्द करे या औरत करे। अजीजाने गिरामी, मेरी बहनें जो इस वीडियो मेरे साथ हैं, सुन रही हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम ये नहीं मानते कि मर्द और औरत इक्वल हैं, हम ये मानते हैं कि आप हमारे सरों के ताज हैं, आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं। ये मैं सिर्फ जुमले नहीं कह रहा हूं, आप सुने रसूल अल्लाह क्या कहते हैं, सुने इमाम जमान क्या कहते हैं। हमारे 12वें इमाम से हदीस है, इन्ना ली फी इब्नते रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। 12वें इमाम कहते हैं कि मेरे लिए फातिमा जहरा रोल मॉडल हैं। 12वें इमाम कहते हैं वक्त का

वो कहता है एक औरत मेरे लिए हुज्जत है, वो उसवा है। ग्यारहवें इमाम से हदीस है, इमाम कहते हैं कि हम तमाम इंसानों पे हुज्जत हैं, लेकिन हम पर फातिमा जहरा हुज्जत हैं। औरतों को खुदा ने इस मकाम पर रखा है। औरत को किसी ऐरे गहरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, फातिमा जहरा के रास्ते पे चलने की जरूरत है। और जो वेस्ट ने आपको आइडिया दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ दिया है, वो फेक है। जो बहनें हमारी सोशल मीडिया डेली यूज करती हैं, उनसे भी मैं मुखातिब होना चाहता हूं। ये आपके लिए, आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में खुशी ला रहा है, लेकिन हकीकत में खुशी नहीं ला रहा है। मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स पेश करता हूं, एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजाने गिरामी, हर चार में से एक लड़की इस वक्त दुनिया में जो है, वो जब भी अपना फोटो डालती है कहीं पर, तो वो फोटो एडिट करके डालती है, क्योंकि वो अपने एक्चुअल फोटो से खुश नहीं होती। अपने आप से लोग, लड़कियों से पूछा गया, बताओ कि कितने लड़कियां इस वक्त दुनिया में जो है, उनसे सर्वे किया गया है कि अपने अपीयरेंस से तुम राजी हो। कहां हर चार में से तीन लड़की जो है इस वक्त कह रही है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल द वे आई लुक। हर चार में से तीन लड़की कह रही है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया है, प्रेशर है। ये यूके में पूछा गया कि लड़कियों में डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है। कहा जो लड़कियां ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करती हैं, उनके अंदर डिप्रेशन का रेट दूसरी लड़कियों से कई बराबर ज्यादा होता है। सो व्हाट एवर यू यूजिंग इन लाइफ, आपको फ्री में डेटा दिया गया है, फ्री में इंस्टाग्राम चल रहा है। दुनिया में कोई चीज फ्री होती है क्या? वो फ्री नहीं होती है, वो आपके आइडिया, आपकी पूरी जिंदगी को वो लोग डेटा बना के यूज कर रहे हैं। बहनों, ये समझो कि ये जो वेस्ट ने मॉडल दिया था, ये फेल्ड मॉडल है। यूट्यूब की एक डायरेक्टर थी, उसने, गौर करिएगा मेरी बहनों, वो कहती है कि मैं 55 ईयर्स की हुई तब मैंने रिजाइन किया, मेरा जो हो गया टर्म तो मैंने छोड़ा काम। 55 ईयर्स होने के बाद मुझे करियर में, आई वॉज वेरी सक्सेसफुल, वन ऑफ द टॉप पर्सन इन यूट्यूब एंड एवरीथिंग, आई हैड एवरीथिंग इन लाइफ, बट व्हेन आई लेफ्ट द कंपनी आई डिड नॉट हैव अ फैमिली। तो मैं घर पे किसके लिए जाऊं? मेरे घर पे कौन है? मेरा फ्यूचर क्या है? मेरे बच्चे क्या हैं? वो कहती है कि मुझे झूठ बोला गया था कि जिंदगी और कामयाब जिंदगी यह है कि आपका करियर अच्छा हो। मुझे काश 20 साल पहले कोई बोलता कि कामयाब जिंदगी वो है जिसके घर अच्छा हो, जिसकी फैमिली बड़ी हो। ये फेक कॉन्सेप्ट जो आपको सेल किए गए, आप खुद पढ़ें जाके उनके बारे में, वहां की सोसाइटीज के बारे में पढ़ें। डिस्ट्रक्शन के नजदीक पहुंच गई है उनकी सोसाइटीज ये फेक कॉन्सेप्ट की वजह से। आप बगैर पढ़े सिर्फ हॉलीवुड का ग्लिटर देख के आप फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके, वो खड्डे में जा रहे हैं, आप भी खड्डे में ही जाएंगे। गौर करें क्या हो रहा है आपके साथ। अमेरिका में इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका के अंदर बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट कई छुट्टियां दे रही है, कह रही है अगर बच्चे पैदा करोगे तो मां को अलग से छुट्टी देंगे, बाप को अलग से देंगे, पैसा अलग देंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कह रहे हैं कि अगर बच्चे पैदा करोगे तो 10,000 डॉलर देंगे, 10,000 यूरो देंगे, पाउंड देंगे बच्चे के लिए, छुट्टी मां को अलग, बाप को अलग। वो कहते नहीं, मुझे बच्चे नहीं पैदा करना है, वाई शुड आई टेक द ट्रबल। If the purpose of life was just to enjoy and live like an animal, my animalistic needs are getting fulfilled, why should I take the pain of having a kid and nurturing a kid? Why should I take the pain?

So, ये जो concept of life जिसके अंदर बताया गया है, ये concept of life पूरी human society को destructions के नजदीक लेके जा रही है. आपको इतनी लज्जत की आदत करा देंगे, आपको इतनी आदत करा देंगे comfort zone की. Why should I take the pain? Why should I get married? What is the result? रिजल्ट ये है कि गौर करिएगा, खोजा कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. या अली अजीजाने गिरामी, पूरी दुनिया में TFR द टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप हो रहा है. आपकी कम्युनिटी में जिससे भी पूछो कितने बच्चे हैं, बहुत रेयर कोई मिलेगा जो बोलेगा 2 से ज्यादा है. क्यों बच्चे पैदा नहीं कर रहे आप? कोई अगर एक आदमी शिया हो जाता है आप कितना खुश होते हैं? होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं? होते हैं ना. खुद आपकी नस्ल से एक शिया बढ़ जाए, इसमें आप खुशी नहीं होती आपको? लेकिन वही कॉन्सेप्ट क्या है, कंफर्ट जोन, ट्रबल, पेन, हार्डवर्क नहीं चाहिए, जिंदगी आराम चाहिए, मजे होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, साथ में इमाम जमाना का जहूर भी चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं चाहिए. सो गौर करिएगा, आपकी कम्युनिटी और पूरी दुनिया में सब जगह यही है कि TFR जब गिरता है तो रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे हो जाता है. अगर आपके सिर्फ 2 हैं और 2 ही करेंगे तो भी रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे होता है. यानी क्या, गौर करिए, सोसाइटी में कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं और कुछ बच्चे हैं. जितने जवान हैं क्या बन जाएंगे? बूढ़े बन जाएंगे. किसी को पसंद नहीं है लेकिन बनना सबको है. जितने जवान हैं सब क्या बनेंगे? बूढ़े. जितने बच्चे हैं वो क्या बनेंगे? जवान. इनफ बच्चे होना चाहिए कि इनफ जवान बन सकें. जितने जवान हैं वो सब बूढ़े हो जाएंगे और जितने बच्चे हैं वो इनफ नहीं हो रहे कि इनफ जवान बन सकें. तो यूनाइटेड नेशन का डेटा है कि 2100 आते आते जो बूढ़ों की तादाद है वो 866 मिलियन हो जाएगी और जवानों की तादाद 100, यानी इतना फर्क होगा कि 8 times बूढ़े दुनिया में ज्यादा होंगे कि सारे जवान बूढ़े हो जाएंगे. किसी को बच्चे पैदा करना नहीं है. अमेरिका में नहीं कर रहे हैं, यूरोप में नहीं कर रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं कर रहे हैं. पहले चाइना ने कहा था 1 child policy, फिर कहा 2, फिर कहा 3. अब रशिया में पैसा दे रहे हैं बच्चे पैदा करने के लिए, कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा है. खोजा कम्युनिटी कब रहेगी? जब बच्चे होंगे. बच्चे नहीं होंगे तो बूढ़े कम्युनिटी हो जाएगी. बच्चे पैदा नहीं हो रहे इज अ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम फॉर आर कम्युनिटी, फॉर शियाज, फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जहूर. बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं. वहां हमारे उलमा कह रहे हैं 5 बच्चे होने चाहिए, 6 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा बच्चे होना चाहिए, बड़ी फैमिली रखो, ज्यादा मेहनत करो. ये मौलाना लोग का क्या काम है, बोल के चले जाते हम लोग को. लेडीज लोग बोल रहे हैं वहां से, तुमको क्या है, हमको पेन लेना पड़ता है. गौर करिए, अगर आपके पेरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने ये पेन नहीं लिया होता ना, तो आज हमारी सोसाइटी में 50% लोग नहीं बैठे होते. आप यहां हो क्योंकि आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था 4 बच्चे होने चाहिए. मैं जो बातें कर रहा हूं अजीजाने गिरामी, आपके साथ स्टैटिस्टिक्स के साथ बात कर रहा हूं. पूरी दुनिया आप कह रही है बच्चे पैदा करो. आप सोचें, रहबर मुअज्जम शहीद, उनका जुमला है जिंदगी में एक बार उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई. कब का? कहा जब ईरान में यूनाइटेड नेशन ने कोशिश की कि बच्चे कम होना चाहिए, हाशमी रफसंजानी ने कोशिश की, मैंने मना नहीं किया उस टाइम पे, मेरी गलती हुई थी.

स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है जाने गिरामी कि हम लोग जो हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर इस बात का ख्याल करें कि हमारे बच्चे हों, हमारी फैमिलीज बड़ी हों। अगर जहूर के लिए हार्डवर्क और कोशिश और स्ट्रगल वो तो करनी है, अगर किसी को जहूर चाहिए और इमाम जमाना का सिपाही भी बनना है और लेकिन मेहनत भी नहीं करना है। मेरा एक सवाल है हमारी बहनों से, आप इमाम जमाना को सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं? बताइए क्या दे सकते हैं? सिपाही। और सिपाही की तरबियत आप सबसे बेहतर कहां कर सकते हैं? अपने घर में। एक लास्ट बात कह दूं, वक्त तेजी से चला गया, गौर करिए अजीजाने गिरामी, मौलाना ज्यादा बच्चे होंगे, क्वांटिटी होना चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए मौलाना। 5 बच्चे होंगे तरबियत नहीं होगी तो क्या फायदा उससे, अच्छा 2 होंगे तरबियत होगी। पहली बात तो आपने गारंटी लिए 2 होगी तो तरबियत करोगे, कर लिए 2 की तरबियत हो गई गारंटी पूरी। दूसरी चीज ये है कि तुम्हारे चाचा दादा इन लोग सब थे, इनके 8-8, 7-7, 5-5 भाई बहन थे, सब गुंडे मवाली बन गए थे क्या? सब बेदीन हो गए थे? अच्छा ये मैं आपको नकजी जवाब, अब हल्ली जवाब, आप डॉक्टर से पूछ लें, साइकेट्रिस्ट से पूछ लें, जब बच्चे 1 या 2 होते हैं घर के अंदर तो उन बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहां पर बच्चे दस्ते जमी कलेक्टिव गेम्स खेल सकें। बच्चे 5 होते हैं तो घर के अंदर 2-2 की लड़ाई होती है, तो जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो तरबियत पा रहा होता है बाप और मां बनने की, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो लीडर होता है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। बच्चे आपके 5 भी होंगे तो बाप जब घर पे आएगा तो बाप को आधा घंटा देना है, अगर बाप आधा घंटा दे रहा है बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चा 1 हो चाहे 5 हो, बच्चों को उसको टाइम देना ही है। अजीजाने गिरामी, बस औरतें ये सोचें कि मैं एक मिसाल दूं ताकि हमारी बहनों को समझ में आए कि बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, या अली, बीबी की जिंदगी जो है इज्दवाजी जिंदगी तकरीबन 8 साल की है। 8 साल की जिंदगी में बीबी के 5 बच्चे हैं, 5वां शहीद है। किन हालात में बीबी के इतने बच्चे हैं? उन हालात में कि अली 80 से ज्यादा जंग और गजबों में शामिल हैं, अक्सर वक्त अली घर में नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, गुर्बत है, मुश्किलें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 4 ऐसे नायाब हीरे दुनिया को दे गई फातिमा। आपके लिए अगर फातिमा जहरा रोल मॉडल हैं तो आप जिंदगी अलग तरीके से जिएंगी। आपके लिए जिंदगी की प्रायोरिटी ये है कि मुझे ऐसी नस्ल की तरबियत करनी है जो इमाम के काम आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कम्युनिटी के अंदर बहुत फैसिलिटीज भी आपके पास है, दूसरी जगह नहीं है फैसिलिटीज। आपके पास मदरसा सिस्टम है, आप मुझे बताएं कितनी जगह पर ये मदरसे का सिस्टम इस तरीके से है। आपके पास अच्छे उलमा हैं जो फैमिली काउंसिलिंग कर सकते हैं, कितनी कम्युनिटीज के पास है। आपके पास एडुकेशन में हेल्प करते हैं आप, अलग अलग फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल है जमात की तरफ से। इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी आप इमाम जमाना के सिपाहियों को क्यों नहीं बढ़ा रहे? गौर करिए, मैं एक मिसाल देता हूं सैयद हसन की, लुबनान के। वो एक बार स्पीच दे रहे थे तो वो स्पीच में सैयद हसन कहते हैं, लुबनान के जो शेर शहीद हो गए, वो कहते हैं कि लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोग अहले सुन्नत को शिया करना चाहते हैं जबकि हम लोग ये नहीं चाहते और हमारा ये पर्पस नहीं है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक मिसाल दी और कहा कि अच्छा बताओ अगर हम लोग एक

साल में शिया बनाएं तो कितने शिया लेबनान में बना लेंगे? तो कहा 5,000 बना लेंगे। कहा लेकिन अगर आज हमने अपने हिजबुल्ला को कहा गो, तो अगले साल हमारे 50,000 सिपाही बढ़ जाएंगे। यानी अगर हिजबुल्ला के सिपाहियों को कहा कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है तादाद बढ़ाओ, तो 50,000 तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अजीजाने गिरामी, हमारी कुल्लन, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद रब्ते मसायब, गौर करिए। अगर 2100 में दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बूढ़े ज्यादा होंगे, जवान कम होंगे, तो जिस कौम के जवान सबसे ज्यादा होंगे, उसी कौम के जवान सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, उसी कौम के जवानों के बाद पास उस वक्त की दुनिया की बागदौड़ होगी। वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे क्योंकि वो किसी इमाम के लिए नहीं रुके, तुम बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे? फ्यूचर तुम्हारा है, फ्यूचर जवानों का होगा। मुश्किलें होंगी, सख्तियां होंगी, लेकिन ये सख्तियों का ही नाम तो जिंदगी है। अजीजाने गिरामी, बस करबला इसी का नाम है, सख्तियों को झेलने का, मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाने का नाम करबला। अजीजाने गिरामी, आहिस्ते आहिस्ते मुहर्रम के अय्याम खत्म होने के नजदीक जा रहे हैं। अजीजाने गिरामी, आज एक यतीम का मातम, एक यतीम का मातम, ऐसा रोना कि हसन इब्न अली को पुरसा दे सकें कि उसके यतीम को आज अरबाब अज़ा कहते हैं मौला हसन कि जब शहादत हुई तो 3 साल के थे कासिम, हसन को नहीं देखा था कासिम ने, हुसैन ने बाप समझ के बाप बन के पाला था कासिम को। कहते हैं कासिम बहुत हसीन थे, कितने हसीन थे, इतने हसीन थे कि जब खैमे से कासिम बाहर निकले तो दुश्मन कह उठा ऐसा लग रहा है खैमे से कोई चांद का टुकड़ा बाहर आ रहा है। हसीन भी थे, शुजा भी थे, नवासे थे, अली इब्न अबी तालिब के पोते थे, अरबाब अज़ा ये कासिम थे, लेकिन इनके दिल में एक जज्बा था शहादत का, और ये अपने आप से पूरी शब आशूर सवाल कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि शहीदों में मेरा नाम ना हो। अरबाब अज़ा शबे आशूर आई, हुसैन इब्ने अली एक एक शहीदों का नाम बता रहे थे, उनका मकाम बता रहे थे। एक बार अली असगर का नाम लिया, कासिम का खून खौल गया। क्या शकिया खैमों में आ जाएंगे, कासिम से बर्दाश्त नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कासिम काश शामे गरीबा में आते, सकीना की सदाओं को सुनते कासिम। बस शबे आशूर में मौला हुसैन से कासिम बार बार पूछ रहे थे मेरा नाम भी शहीदों में है ना? इमाम हुसैन खामोश रहते थे, जवाब नहीं देते थे। एक बार हुसैन ने कासिम से पूछा बताओ तुम्हारे लिए मौत कैसी है, कहा अहला मिन अल असल, शहद से ज्यादा शीरीन है। कासिम की रात गुजरती रही, कासिम को इज्न ना मिला। एक जगह बैठे कासिम, याद आया बाबा ने कहा था

खोली, बाबा का इज्न मिल गया, मेरे भैया पे जान कुर्बान कर देना। अरबाबे अजा कासिम आए, खुशी खुशी आए, अरे अम्मू जान अम्मू जान, ये भैया की तावीज ले लो। हुसैन ने तावीज ली। अरबाबे अजा उलमा कहते हैं मक्तल में लिखा है

0: हुसैन सोच रहे हैं, अरे ये चांद सा टुकड़ा मादरे कासिम के पास कैसे ले जाऊं। या हुसैन,
1: शबी बरामद होगी
2: बाप।

अरे कुछ लहू असीना था, लहू सर से बहा था, इस फूल से बच्चे पे अजब जुल्म हुआ था। ये

कहे शेह खाक पे भाई का पिसे ढूंढ रहे मैदान में वो लाशा है कहाँ ढूंढ रहे।

अरति बरा के वहीं गिरते हैं, गश आते हैं शह को, जब जिस्म का टुकड़ा कोई मिल जाता है शह को।